0: आपके हक के लिए लड़ूंगा, बोलिए इंकलाब, बोलिए इंकलाब।
1: ये तो इमरजेंसी का सायरन है।
2: अरे हाँ, लगता है धरती पर

0: मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, 684 किलोहर्ट्ज़ FM 100.1 MHz और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है।
1: पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
2: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगी। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी।

0: यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने आज से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। बिहार में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव मौजूदा सांसद नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण हो रहा है। गुजरात में मंजलपुर विधानसभा सीट योगेश भाई नारंदास पटेल के निधन के कारण तथा मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती की अयोग्यता के कारण दतिया सीट खाली हुई थी। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। रूस ने आज सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In his departure statement, the Prime Minister said his visit to Indonesia, Australia and New Zealand will further strengthen India's Act East policy, Mahasagar vision, as well as the country's outlook towards a free and open Indo-Pacific. Prime Minister Modi said his visit to Indonesia will further deepen the comprehensive strategic partnership, which was elevated during his 2018 visit. From Indonesia, the Prime Minister will travel to Melbourne at the invitation of Australian Prime Minister Anthony Albanese. He said the visit will strengthen the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership through discussions on defence and security, trade and investment. He will also interact with the Indian diaspora. The Prime Minister will then visit Auckland at the invitation of New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. He said the visit will build on the momentum in bilateral ties following Prime Minister Luxon's visit to India in March last year, with discussions focusing on economic, trade and commercial engagement. India will chair the 9th session of the Intergovernmental Group of

0: घर आंगन के आज के शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला
1: और मैं हूँ रश्मि कुकरेती। स्वीकार कीजिए मेरा और मंजुला का
0: प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, साथ ही साथ इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर।
1: तो मंजुला, आज जो 6 जुलाई का दिन है, भारतीय इतिहास में दो महत्वपूर्ण हस्तियों की याद दिलाता है।
0: और आज पुण्यतिथि है बाबू जगजीवन राम जी की, एक ऐसे नेता जिन्होंने सामाजिक समानता, अधिकारों और देश की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया।
1: और साथ ही आज जयंती भी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, जो कि एक प्रखर शिक्षाविद थे, विचारक थे, राजनेता थे और इन्होंने राष्ट्रीय एकता और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। इन दोनों महान व्यक्तित्व को FM गोल के स्टूडियो से हमारी विनम्र श्रद्धांजलि।
0: और दोस्तों, अब आज का सवाल, आपका फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट कौन सा है, यानी फेवरेट मेकअप लुक कौन सा है? लिपस्टिक, काजल, बिंदी या फिर कुछ और, कोई ऐसी चीज जो आप मेकअप करते वक्त हमेशा अप्लाई करती हैं या करते हैं, यानी आपका फेवरेट मेकअप लुक कौन सा है? जवाब हमें ईमेल लिखकर भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।
1: तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाले हैं मधुर संगीत, दिलचस्प बातें और ढेर सारी मस्त

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म दो रास्ते से। और मंजुला, कल भारतीय लोक कला ने अपने सबसे बुलंद आवाजों में से एक को खो दिया। पर्णवानी की महान साधिका, पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई जी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं।
1: और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि शायद कोई पुरस्कार नहीं थी, बल्कि ये थी कि उन्होंने एक लोक कला को आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर बना दिया। उन्होंने साबित किया कि सच्ची कला न सीमाएं देखती है, न परंपराओं की दीवारें, वह बस दिलों तक पहुंचती है।
0: जी, और उनकी आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी गाई हुई महाभारत की कथाएं, उनका संघर्ष और उनकी विरासत हमेशा हमारी संस्कृति में जीवित रहेगी। एफएम गोल्ड के स्टूडियो से उनको बहुत श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
2: पद्म विभूषण तीजन भाई।
3: ऐसे है, मैं तो पहली पंडवानी गायक खुद नहीं जानत रहे हूँ। लड़का जात में लड़का मती खेलना कूदना यही हमारा काम रहा है। कहानी कथा ते कहानी सुनता हूँ ऐसे की कब के और द्रौपदी

0: और आज का सवाल हम फिर से दोहराते हैं कि आपको ये बताना है कि आपका फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट कौन है। क्यों रश्मि, आप क्या कहती हैं इस बारे
1: जी,
0: में?
1: जी, मेकअप लुक कौन सी है, आपको क्या पसंद है, और एक जवाब भी आ गया है मंजुला। और क्योंकि देखिए ये कार्यक्रम घर आंगन केवल महिलाओं के लिए नहीं है, परिवार के लिए, तो नवीन भाटिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीनगर से, कह रहे हैं क्या जेंट्स भी बता सकते हैं? जी बिल्कुल आप बता सकते हैं, और क्योंकि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप हमारे श्रोता है, वो कह रहे हैं कि मुझे तैयार होना बहुत अच्छा लगता है, वैसे मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ शेविंग करता हूँ, अच्छे से तैयार हो जाता हूँ बढ़िया कपड़े पहन के, तो बहुत अच्छी बात है। और ये सवाल था हमारा मंजुला, और सवाल पे सवाल हम लगातार किए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं श्रोता लगातार हमसे जुड़ रहे हैं ना।

0: और एक सवाल मैं तुमसे मंजिला कर रही हूँ, क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसे बनाया नहीं गया बल्कि एक ही विशाल चट्टान को तराश कर निकाला गया हो,
1: और वो भी ऊपर से नीचे? जी, आज की आध्यात्मिक यात्रा पे ले चलते हैं और मैंने ऐसे एक मंदिर को सुना है, महाराष्ट्र के एलोरा स्थित कैलाश मंदिर की ओर। एक ऐसा स्थापत्य है रश्मि, जिसे देखकर आज भी दुनिया हैरान रह जाती है। जरा सोचिए, इस मंदिर में एक भी पत्थर जोड़कर नहीं लगाया गया है। लगभग 2,00,000 टन चट्टान को हटाकर एक ही विशाल शिला से पूरा मंदिर तराशा गया, और सबसे हैरानी की बात, काम ऊपर से नीचे की ओर शुरू हुआ, यानी गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि यदि एक भी गलत चोट लग जाती तो उस पत्थर को दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता था।
0: जी बिल्कुल, और यही तो वजह है कि जो कैलाश मंदिर है ना, उसको दुनिया की सबसे अद्भुत इंजीनियरिंग उपलब्धियों में गिना जाता है। और देखिए ना, कितनी हम आजकल तो कितनी सारी सुविधाएं हैं, क्रेन है, कंप्यूटर है, आधुनिक मशीनें हैं, लेकिन उस समय अद्भुत कल्पना, गणना, धैर्य और असाधारण शिल्प कला से 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने भगवान शिव को समर्पित करते हुए इसे बनवाया था मंजुला।
1: और मंदिर का नाम कैलाश इसलिए रखा गया क्योंकि इसके भगवान जो शिव हैं उनके दिव्य धाम कैलाश पर्वत का प्रतीक माना जाता है। इसकी दीवारों पर रामायण, महाभारत और शिव पुराण के जीवंत दृश्य उकेरे गए हैं। हर मूर्ति, हर नक्काशी मानो पत्थरों में सांस लेते हुए महसूस होती है।
0: तो अगली बार मंजुला कभी आप एलोरा जाएं तो कुछ पल शांत बैठिए, उन पत्थरों को देखिए जिन्हें सदियों पहले किसी कलाकार ने अपनी आस्था और तपस्या से जीवंत बना दिया। वहां जाकर एहसास होता है कि कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती मंजुला, बल्कि महसूस करने के लिए होती है।
1: और कैलाश मंदिर हमें ये भी सिखाता है कि जब दृष्टि स्पष्ट हो, धैर्य अटूट हो और समर्पण पूर्ण हो तो पत्थर भी इतिहास बन जाते हैं। तो अगली बार अगर यात्रा की आपने प्लान की तो यहाँ पे जरूर जाइएगा।
0: और ये जो मंदिर

0: अभी हम सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति और रूप कुमार राठौर की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत फिल्म भैरवी से। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा आज का सवाल क्या है, तो जवाब भी आने लग गए हैं। और अभी अंशु माला जी ने एक बहुत ही खूबसूरत मेल भेजा है। उन्होंने लिखा है कि नमस्ते मंजुला जी, मैं ऐसे तो फुल मेकअप लुक पसंद करती हूँ, हेवी नहीं और सब कुछ आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाए, ऐसा जो मेकअप है वो मुझे बहुत पसंद आता है। लेकिन उन्होंने एक चीज बताई है कि साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है इन क्लॉथ्ड कॉग्निशन, जिसका मतलब है कि हम जो भी पहनते हैं या खुद को जैसे प्रेजेंट करते हैं, वो सच में हमारे फीलिंग्स, हमारे थॉट्स और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही रश्मि जी, आपका क्या सोचना है?
1: बहुत सारी मेल्स हैं मेरे पास। अनन्या की मेल है, वो कह रही है कि मेरा पसंदीदा मेकअप जो लुक है वो बड़ा सादगी भरा है, न्यूड मेकअप लुक है, और कहती है कि हल्का मेकअप पसंद है, पतला आईलाइनर लगाती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, भारी मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे प्राकृतिक और सादा लुक अच्छा लगता है, ऐसा वो कह रही हैं। और साथ में चरणदास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चौधरी वास, राजू अग्रवाल, निर्मल देवी, वो कह रहे हैं कि आज उनकी शादी की सालगिरह है, आप लोगों के प्यार के साथ हैं, वो तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाइयां जी, है ना। और देखिए कुछ जो पुरुष हैं वो कह रहे हैं कि हम काजल लिपस्टिक तो नहीं लगाते, बस नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। भाई ये तो सादगी भरा जो है, जो ये तो स्वच्छता है, ये तो पहली शर्त है। अगर आप खूबसूरत देखना चाहते हैं, स्वच्छता तो जहाँ होते हैं वहाँ तो ईश्वर का वास होता है।
0: और रोहिणी से आराधना, वंदना, राधा, मीनाक्षी, ईशा ये लिखते हैं कि हमें तो सिंपल लुक ही पसंद है, साड़ी का लुक सब जगह काम आता है, चाहे मीटिंग हो या पार्टी या फिर शादी का कोई फंक्शन, बस आप साड़ी पहन लीजिए, हल्का या भारी कोई भी पहन सकते हैं। और एक और मेल आया है, कोई क्या दिख रहा है, उग्रसेन यादव जी का, कि आप दोनों को मेरा आदर सहित राम राम। और घर आंगन में जो मैसेज कर दिए जाते हैं, थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, थोड़ा हर किसी को जो मर्यादा में रहें तो अच्छा रहेगा। चलिए आपके मेल सबके लिए बहुत,
1: देखिए हम तो ये कहेंगे कि सबसे जो खूबसूरत मेकअप है ना, वो होता है आत्मविश्वास, मुस्कान और सादगी। बाकी देखिए ये तो जो चेहरे पर लगाने वाली चीजें हैं, हमें तो कहा जाता था कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप पोषण से भरपूर खाना खा रहे हैं और साफ धुले हुए कपड़े पहन रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका जो खूबसूरत स्वास्थ्य अपने आप बताएगा कि आप कितनी खूबसूरत हैं या आप कितने हैंडसम हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा। और एक खास बातचीत हम अब करने जा रहे हैं कि भारत में एक ऐसी 300 साल पुरानी फ्लोरिंग तकनीक है जो बिना बिजली खर्च किए घर को एसी जैसी ठंडक देने में मदद करती है। तो ये है रश्मि जी केरल की 300 साल पुरानी बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय कावी फ्लोरिंग, सिर्फ एक फर्श नहीं बल्कि भारतीय बुद्धिमत्ता, कारीगरी और सस्टेनेबिलिटी का शानदार उदाहरण है। आज हर घर में एसी, कूलर और बढ़ते हुए बिजली के बिल हमारी चिंता के कारण बन चुके हैं। तब हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ मिलकर एक ऐसा समाधान खोज लिया जो आज भी उतना ही इफेक्टिव है।
1: भाई वाह क्या बात है, कभी तो तुम हमें ले जाती हो मंदिरों की ओर और कभी बताती हो कावी फ्लोरिंग के बारे में, क्योंकि भाई ये तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि चूना, आयरन ऑक्साइड और पानी जैसे प्राकृतिक तत्वों से बनाई जाती है। और तुमने जो बताया उससे मैं और जोड़ दूं कि नारियल के तेल से घंटों पर इन पे पॉलिश किया जाती है, जानते हो, और ये फर्श गर्मियों में पैरों को बड़ा ठंडा महसूस करवाता है और घर के भीतर का तापमान अपेक्षाकृत आरामदायक बनाने में बहुत मदद करता है।
0: बिल्कुल, और सोचिए जहां हम गर्मी से बचने के लिए हजारों यूनिट बिजली खर्च कर रहे हैं, वहीं हमारे पूर्वजों ने प्रकृति से ही ठंडक उधार ली थी। और इतना ही नहीं, कावी फ्लोरिंग पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, इसमें सीमेंट, हानिकारक रसायन का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, यह वर्षों तक टिकती है और समय के साथ इसकी चमक बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात यह पर्यावरण पे भी कम बोझ डालती है।
1: तो हम तो ये कहेंगे जैसा हमारे अभी श्रोता ने कहा कि आधुनिक बढ़ने की दौड़ में हम कभी कभी बुद्धिमान परंपराओं को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन आज जब पूरी दुनिया सस्टेनेबल लिविंग की बात कर रहे हैं तो हम क्यों ना अपनी पुरानी तकनीकी की ओर जाएं जो हमें रास्ता दिखा रही है ना।
0: तो अगली बार जब गर्मी आपको परेशान करे तो याद रखिए भविष्य की कई समस्याओं का समाधान शायद हमारे अतीत की विरासत में ही छिपा है।
1: और इस ठंडक में क्या पता आपको किसी का झुमका भी मिल जाए।

0: अभी हम सुन रहे थे ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म परख से। और इसके साथ हमारे पास जो हमने क्वेश्चन पूछा था ना, तो हमारे साथ श्रोता जुड़ रहे हैं, तो आप जुड़ गए हैं महेंद्र महेश अग्रवाल जी, मीना अग्रवाल जी बहादुरगढ़ हरियाणा से, कह रहे हैं कि कार्यक्रम पसंद आ रहा है, खूबसूरत बातें चल रही हैं, जानकारी अच्छी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हें क्या पसंद है। कभी भी तैयार होकर जाते हैं तो भाई किस प्रकार तैयार होते हैं, तो हमें इंतजार रहेगा। और देखो भाई मंजुला, अगर हम तैयारी की बात करें तो सबसे ज्यादा जब तैयार होते हैं तो वो होती है शादी, है ना, कहीं भी कोई आयोजन या उत्सव है ना, तो शादी में जाने के लिए तो आप अच्छे से तैयार होती होंगी। मैं भी साड़ी वगैरह निकालती हूँ और हमेशा साड़ी में शादी में जाने के लिए तैयार होती हूँ, है ना।
1: बिल्कुल, तो शादी की बात जब हो ही रही है तो चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमारे समाज में शादी को केवल दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन माना जाता है, लेकिन एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि शादी का फैसला केवल माता पिता का होना चाहिए या उस व्यक्ति का भी जिसकी पूरी जिंदगी से जुड़ने वाली है। आप क्या सोचती हैं?
0: भाई मुझे लगता है माता पिता तो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही चाहते हैं ना, भाई उनका अनुभव है, उनकी समझ है भाई, और वो अपने बच्चों के लिए बहुत चिंता भी करते हैं। लेकिन शादी एक ऐसा निर्णय है मुझे लगता है मंजुला, जिसे जीवन भर निभाना होता है, इसलिए भाई बच्चों की इच्छा, उनकी सहमति और उनकी भावनाओं का सम्मान होना उतना ही आवश्यक है जितना भाई माँ बाप की या परिवार की राय।
1: बिल्कुल सही, लेकिन सहमति यानी कंसेंट केवल एक औपचारिक हाँ नहीं है रश्मि जी, यह एक स्वतंत्र, स्पष्ट और बिना किसी दबाव के लिया गया निर्णय है। यदि कोई व्यक्ति डर, भावनात्मक दबाव, सामाजिक प्रतिष्ठा या पारिवारिक मजबूरी के कारण शादी के लिए तैयार होता है तो उसे वास्तविक सहमति नहीं कहा जा सकता।
0: हम तो ये कहेंगे भाई, जब किसी युवक या युवती को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है तब रिश्ते और अधिक मजबूत होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और भाई हम तो ये कहेंगे कि सफल जो विवाह होता है उसकी नींव केवल परंपराओं पर नहीं टिकी होती बल्कि आपसी सम्मान, समझ और स्वेच्छा पर टिकी होती है ना।
1: सही कहा, और माता पिता का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है लेकिन अंतिम निर्णय में बेटे या बेटी की इच्छा को भी समान महत्व मिलना चाहिए, क्योंकि शादी कोई पारिवारिक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा व्यक्तिगत निर्णय है।
0: तो हम तो ये कहेंगे भाई मजबूरी से बना रिश्ता कुछ समय तक ही चल सकता है लेकिन सहमति से बना रिश्ता विश्वास और सम्मान के साथ जीवन भर खिल सकता है।

0: चाय पे बुलाने के वक्त आप क्या पहनती हैं, कैसे सजती हैं, कैसे संवरती हैं, यही तो है हमारा आज का सवाल। तो कार्यक्रम है घर आंगन, मैं हूं आपके साथ मंजुला और रश्मि जी, और हमारा सवाल तो आप जानती हैं कि आज आपको कौन सा मेकअप लुक पसंद है वो बताना है। और अभी हम सुन रहे थे ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म सौतन से।
1: और एक और जवाब हमारे पास आया है, आप हैं डी राजेश्वर राव एडवोकेट, और वो कह रहे हैं कि खूब सारा पानी पीजिए और ऐसी चीजें खाइए जिसमें खूब सारा पानी हो, जैसे कुकुम्बर, वाटरमेलन एंड सेलरी, यानी कि खीरा खाइए, है ना, तरबूज खाइए और खूब सारा पानी पीजिए, क्योंकि पानी पीने से जो त्वचा है वो वैसे ही खूबसूरत लगती है और आपकी जो रिंकल्स होती हैं वो हट जाती हैं, मतलब कम दिखने लग जाती है।
0: यानी इन्होंने मेकअप की बात अंदर से बताया है, यानी भीतर की खूबसूरती कैसे बढ़ेगी वो बताया है।
1: जी,
0: तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले विषय की ओर, असली नारीवाद यानी रियल फेमिनिज्म क्या है। होता ये कि आज फेमिनिज्म यानी नारीवाद शब्द सुनते ही अक्सर बहस शुरू हो जाती है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या नारीवाद पुरुषों के खिलाफ है, क्या ये हमारी संस्कृति से नफरत करना सिखाता है, या फिर बराबरी और सम्मान की बात करता है।
1: बिल्कुल, हमें तो लगता है कि हमें साथ मिलकर चलना है, बराबरी के अधिकारों की बात करनी है, और हर व्यक्ति चाहे वो महिला हो या पुरुष, उसे समान अवसर मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। मंजुला, मैं तो ये कहूंगी कि हम ये सोचें, ऐसा क्यों ना सोचें कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, पहले वो मनुष्य है, है ना, हमें देवी ना बनाया जाए, सिर्फ मनुष्य का दर्जा ही मिल जाए वही बहुत है।
0: बिल्कुल सही कहा। और आज महिलाएं अगर पढ़ रही हैं, अपने फैसले खुद ले रही हैं, विज्ञान, सेना, खेल, राजनीति और अंतरिक्ष तक अपनी पहचान बना रही हैं, तो इसके पीछे कई साहसी महिलाओं का योगदान है। तो वास्तव में नारीवाद का अर्थ ये नहीं है, रश्मि, की अपनी संस्कृति, परिवार या परंपराओं से अलग हुआ जाए। जो परंपराएं सम्मान, समानता और गरिमा को बढ़ाती हैं वो हमारी ताकत है, और जो भेदभाव पैदा करे उन्हें बदलना ही समाज की प्रगति है।
1: जी बिल्कुल, हमें याद रखना चाहिए कि ताकत केवल कठोर होने में नहीं है बल्कि संवेदनशील होने में है। नेतृत्व पुरुषों का भी गुण है और करुणा जो है महिलाओं में भी आ सकती है, तो दोनों में शक्ति भी हो सकती है और कोमलता भी हो सकती है ना।
0: और एक बेहतर समाज तब बनता है जब महिलाएं और पुरुष एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी बनते हैं। तो आइए ऐसा समाज बनाया जहां बेटा और बेटी दोनों के सपनों को एक जैसी उड़ान मिले, क्योंकि जब बराबरी बढ़ती है तब विकास।

0: साथ भी बढ़ता है और यही है रियल फेमिनिज्म।
1: और मुझे एक कविता याद आ रही है जो वरिष्ठ हमारी कवित्री है ममता कालिया की, कहूँ तो मैं सुना दूँ मंजुला। वो कहती है कि जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है उसके सामने दीवार खड़ी होती है। क्रांतिकारी कहते हैं दीवार तोड़ देनी चाहिए, पर लड़की है समझदार और संवेदनशील, वो दीवार पर लगाती है खूंटियां। कौन सी? पढ़ाई लिखाई और रोजगार की। और एक दिन धीरे से उन पर पांव रखती दीवार की दूसरी ओर पहुंच जाती है। तो ये है असली नारीवाद, है ना?
0: बिल्कुल यही है। और असली नारीवाद है साथ रहने में, चाहे आप हो चाहे हम हो, सबके साथ चलने में।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म सौदागर से। और एक और मेल आया है, एक या अनेक आए हैं, तो इसमें अभी जो भेजा है कामायनी जी ने, बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है कि मुझे मेकअप वैसे तो कम पसंद है पर चेहरे के दाग धब्बे छिपाने के लिए कंसीलर यूज करना अच्छा लगता है।
1: और एक और मेल आया है सतप्रकाश सनोठिया रोहिणी जी से, रोहिणी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और कह रहे हैं कैलाश पाषाण में छिपी चेतना को शिल्पियों ने जगाया है, ऊपर से नीचे काट पहाड़ साक्षात शिव को बुलाया है। वो कहते हैं मंदिर नहीं नश्वर जग में अमरता का एक प्रमाण है और क्षणभंगुर मानव के हाथों में छुपा अविनाशी भगवान है। बहुत खूबसूरत, वाह।
0: और गौरी शंकर जी ने लिखा है कि आप दोनों बेटियों को राम राम, अभी झुमके पर गाना चल रहा था, आज तो हमें शादी में जाना भी है, चाहे कितना भी मेकअप कर लो, अगर असली जेवर ना हो नकली भी पहन लो तो खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं।
1: और पुरुष मेकअप के बारे में वो कह रहे हैं कि चेहरे की जुनिया मिटे जल के नया निखार, मैन ग्रूमिंग का चल पड़ा जग में अब व्यापार, लिप बाम और कंसीलर पुरुष करें उपयोग, सुंदरता की रेस में आगे हैं सब लोग। भाई वाह, क्या कविता पे कविता आ रही है।
0: और अनिल मेहता जी के मेल से लगता है उनकी वाइफ ने लिखा है, मीनू मेहता ने, कि मुझे आंखों में काजल लगाना पसंद है, उसके बिना मेरा मेकअप कंप्लीट ही नहीं होता
1: जी। और मधु किरण दिल्ली से कह रही हैं ज्यादातर शादी पर हम अच्छी तरह तैयार होकर जाते हैं पर घूमने जाते हैं तो थोड़ा कम तैयार होकर जाते हैं। तो एक जमाना था जब केवल माता पिता की इच्छा पर शादी होती थी, शादी का भी जो आपने विषय लिया था उसी के बारे में वो कह रही है, परंतु अब तो जिसकी शादी है उसकी पसंद ही पहले पूछनी पड़ती है ना।
0: और इद्रीस सैफी जी कहते हैं कि उनको बाल बनाना और शेविंग करना अच्छा लगता है, चलिए ये तो आपके रोज का काम है ही।
1: और प्रकाश चंद गोगिया दिल्ली से जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं जब कहीं भी जाना होता है तो तकरीबन महिलाएं ही ज्यादा अच्छी तरह तैयार होकर जाती हैं, और कह रहे हैं कि पुरुषों का तो ये है भाई थोड़ा कम तैयार होकर भी चल देते हैं, ऐसा कह रहे हैं।
0: और महेश अग्रवाल जी लिखते हैं कि इंसान की खूबसूरती उसके सजने में नहीं उसके चेहरे की मुस्कुराहट से होती है, मुस्कुराने के बाद सबसे ज्यादा बड़ा श्रृंगार है जो अच्छे गहने और अच्छे कपड़ों को उसकी भी खूबसूरती बढ़ जाती है। बहुत ही अच्छी बात।
1: हम तो ये कहेंगे मंजुला, अगर किसी की आंखों में प्यार हो और चेहरे पर मुस्कान हो तो वो व्यक्ति सबसे खूबसूरत दिखता है, क्या कहती हो?
0: बिल्कुल सही। और आगे बढ़ते हैं, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं कि सबसे पहले जो सुबह सुबह हमारे सर पे एक सवाल नाच रहा होता है कि आज क्या बनाऊं, और इसी सोच में आपका काफी समय निकल जाता है। अगर हाँ तो एक स्मार्ट जीवन शैली की आदत डालिए, वीकली मील प्लान।
1: ओ मतलब स्मार्ट दिखना भी जरूरी है और साथ में स्मार्ट जीवन शैली भी अपनानी जरूरी है। मैं समझ गई तुम क्या कहना चाह रही हो, यानी कि ऐसा कर सकते हैं मंजुला कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन पूरे सप्ताह की ग्रोसरी की खरीदारी कर लें, और इससे बार बार बाजार जाने का जो समय है वो बचेगा और अनावश्यक खर्च भी कम होगा।
0: बिल्कुल। और थोड़ी सी पहले से तैयारी कीजिए, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाकर बर्फ की ट्रे में जमा दीजिए, जब भी खाना बनाना हो बस एक टुकड़ा निकालिए और आपका मसाला तैयार।
1: जी ये सब हमारी दादी नानियां करती आई हैं भाई, जो प्याज और टमाटर हैं भाई, जब टमाटर सस्ते होते हैं खरीद लेती हैं, उन्हें उबालकर बना लेती हैं और फ्रिज में उनके क्यूब्स बना के रख लेती हैं, ये सब करते आए हैं। पहले तो सुखा लिए जाते थे टमाटर को, तो ये सब किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रेवी बनाकर भी रखी जा सकती है।
0: और इडली डोसे का घोल पहले से तैयार रखिए, सुबह का पौष्टिक नाश्ता बिना किसी भाग दौड़ के।
1: बिल्कुल। और धनिये पुदीने की चटनी को कैसे भूल सकती हो, उबले हुए चने हो, राजमा हो, अंकुरित अनाज हो, सलाद की सब्जियां धोकर सुखाकर डिब्बों में रख दीजिए, इससे हर दिन ताजा और पौष्टिक भोजन बनाना आसान हो जाएगा।
0: बिल्कुल सही। तो याद रखिए स्मार्ट जीवन शैली का मतलब ज्यादा मेहनत करना नहीं बल्कि समझदारी से योजना बनाना है। सप्ताह में कुछ घंटों की तैयारी और आपको पूरे समय का जो ऊर्जा है मेहनत है वो सब बच जाएगा। तो आप क्या कहती हैं, इस सप्ताह साप्ताहिक भोजन की तैयारी अपनाइए और देखिए रसोई का काम कैसे आसान व्यवस्थित और तनाव मुक्त हो जाता है।
1: जी ये मैं करने वाली हूँ मंजुला।

गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी, फिल्म है ज्वेल थीफ। और इसी के साथ हमारी आज की प्रस्तुति यहीं तक। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। दीजिए रश्मि और मंजुला को इजाजत। नमस्कार।

0: और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग

0: गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों की मदद करने के लिए है। श्री शाह ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी सहकारी समितियों का डेटा एक जगह उपलब्ध है। श्री शाह ने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति बनाई गई है।
1: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम

स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि का रुख है। सेंसेक्स 576 अंक बढ़कर 78,340 और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,438 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: identify us, like Aadhaar, that securely links individuals to the wider health system. It helps patients access digital health services. They can connect to insurers, healthcare facilities, doctors and other services with all their medical history intact through this network. The Election Commission today issued notification for by-elections to three assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. The by-elections will be conducted for Bankipur constituency in Bihar, Anjalpur constituency in Gujarat and Datia constituency in Madhya Pradesh. As per the notification, nominations will be accepted until the 13th of July and scrutiny will be held on the 14th. The polling for these seats is scheduled to be held on 30th July. The Election Commission has also announced by-elections to three seats of the Rajya Sabha from West Bengal. The seats were vacant following the resignation of Rajya Sabha members Shukhendu Shekhar Rai, Sushmita Dev and Prakash Chikbaraik. The notification for the elections will be issued tomorrow, while the last date for filing nominations is the 14th of July. In Ukraine, at least 10 people were killed and 46 others were injured after Russia launched a ballistic missile attack on the capital Kiev this morning. This came a day before a key NATO summit in Turkey, which US President Donald Trump is expected to attend. Ukraine's Air Force said Russia used ballistic missiles, cruise missiles and drones in the attack. Explosions echoed across the city as civilians sought shelter in metro stations. The Intermeteorological Department, IMD, has issued red alert for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra and Chhattisgarh today. The weather agency predicted heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Mahe, Madhya Pradesh and Uttarakhand during the day. England stormed into the FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 3-2 victory over Mexico at the Azteca Stadium in Mexico City today. In another match, Brazil's veteran player Neymar Jr. has announced his retirement from international football. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। वक्त हुआ है दोपहर के 1:10 और 15 सेकंड और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक ही सिम से। प्रोग्राम शुरू करो उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
3: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा, आरबीआई कहता है।
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जी हाँ दोस्तों, आज प्रोग्राम एक ही फिल्म लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और आप सभी का अभिनंदन स्वागत करती हूँ इस फिल्मी सफर में, जिसमें हम लेकर आते हैं भारतीय सिनेमा की उन फिल्मों की कहानियों को, फिल्मों से जुड़ी बातों को जिन्होंने समय के साथ अपनी चमक और भी बढ़ा दी। आज बात करेंगे 1990 की उस फिल्म की जिसने ना सिर्फ दो नए चेहरों को रातों रात सुपरस्टार बना दिया, बल्कि हिंदी फिल्म संगीत को भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जी हाँ, आप मेरी बातों से अंदाजा लगा ही चुके होंगे, और जब आपने अंदाजा लगा ही लिया है तो फिर देर किस बात की। जवाब मेल के जरिए हम तक तो पहुंचा दीजिए। मेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com। जब तक आपके जवाब हम तक पहुंचे, तब तक हम आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। और हाँ, अभी भी अगर आप अंदाजा लगाने में थोड़ी सी चूक कर रहे हैं तो इसको सुनने के बाद आप 100% श्योर हो जाएंगे कि आज हम कौन सी फिल्म चुनकर लाए हैं 1990 की।

जी हाँ, और हम भी आपको बता देते हैं कि आज हम लेकर आए हैं 1990 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म आशिकी, जिसने अपने संगीत की वजह से फिल्म जगत में झंडे गाड़ दिए। आज भी इस फिल्म के गीत, इस फिल्म का संगीत कल की तरह ही लोकप्रिय है, कर्णप्रिय है। इस फिल्म से संगीतकार नदीम श्रवण और गायक कुमार सानू अपना करियर बनाने में सफल रहे। इस फिल्म के संगीत एल्बम को प्लेनेट बॉलीवुड के 100 ग्रेटेस्ट बॉलीवुड साउंड ट्रैक में चौथा स्थान मिला था। बहुत बड़ी बात थी ये उस वक्त। और फिल्म को डायरेक्ट किया था महेश भट्ट जी ने, गुलशन कुमार, मुकेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म की कहानी लिखी थी।

रूबीन भट्ट और आकाश खुराना ने। संगीत जैसा कि हमने आपको बताया कि नदीम श्रवण जी का था और फिल्म के सितारे थे राहुल रॉय और अनु अग्रवाल दीपक तिजोरी। सुनते हैं इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत। आपके ढेर सारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं और उनको भी हम शामिल करेंगे कुछ देर बाद।

फिल्म में राहुल राय का ही किरदार निभाया, यानी कि इनका फिल्म में भी नाम यही था। दिल्ली की कुड़ी अनु अग्रवाल ने फिल्म में अनु बर्गिस का रोल प्ले किया था। अवतार गिल पुलिस इंस्पेक्टर देश पांडे के किरदार में नजर आए। रीमा लागू बनी मिसेस विक्रम रॉय यानी कि राहुल की माँ। टॉम अल्टर बने आर्मी कैंपवेल। मुस्ताक खान रफू मास्टर, जावेद खान अंकल पीटर और राहुल के दोस्त का किरदार निभाया था दीपक तिजोरी ने, जो बने थे बल्लू। और आपको बता दें कि फिल्म की जो कहानी है वो राहुल और अनु के बीच एक प्रेम, खूबसूरत जो प्रेम है उसके ऊपर है। दोनों अलग अलग परिस्थितियों में आते हैं लेकिन संगीत और प्यार उन्हें एक दूसरे के करीब ले आता है। परिवार, समाज और परिस्थितियों की कठिनाइयों के बावजूद दोनों अपने रिश्ते और सपनों को बचाने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि संघर्ष, विश्वास और उम्मीद की कहानी भी है। फिल्म के गाने बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही

कर्णप्रिय और बहुत ही मधुर आज भी उतने ही फेमस है जितने कल थे और इन गानों को अपनी आवाज के जादू से सवारा था कुमार शानू सानू अनुराधा पोजवाल उदित नारायण नितिन मुकेश ने। संगीत नदीम श्रवण और गीतकार थे

जी हाँ, ये फिल्म आज भी लोगों के दिल के करीब है। हम और आप ले लीजिए, हमें जब भी हम बात करते हैं अगर उस दौर की 1990 की, तो शायद इस फिल्म

का नाम जरूर लेते हैं। इस फिल्म के बाद राहुल रॉय का हेयर कट बहुत पॉपुलर हुआ था। युवाओं में उनके जैसे हेयर कट करवाने की एक होड़ जैसी मच गई थी। महेश भट्ट इंदिरा रॉय के घर गए थे उनको बधाई देने के लिए, क्योंकि उनकी एक मैगजीन उस टाइम रिलीज हुई थी और इंदिरा जी जो थी वो एक चैरिटी वर्कर थी यूनिसेफ की, और राहुल रॉय उनके बेटे थे। महेश भट्ट ने जब राहुल रॉय को देखा तब उन्होंने मन बना लिया था कि उन्हें अपनी फिल्म आशिकी में उन्हें कास्ट करना है। महेश भट्ट अपनी बेटी पूजा भट्ट को इस फिल्म में नायिका के रूप में लेना चाहते थे, मगर पूजा ने मना कर दिया था क्योंकि तब वो फिल्मों में आने के लिए तैयार नहीं थी। और जानते हैं आप, इस फिल्म का एक बड़ा हिस्सा महेश भट्ट की असल जिंदगी से जुड़ा हुआ है, उनकी पहली पत्नी किरण भट्ट के साथ।

नए कलाकारों के साथ बनी फिल्म मैंने प्यार किया कि अपार सफलता के बाद उसको देखते हुए महेश भट्ट के दिमाग में भी नए कलाकारों को लेकर फिल्म बनाने का आइडिया आया और उन्होंने बना दी फिल्म आशिकी। इस फिल्म के गाने इतने ज्यादा फेमस हुए थे कि टी सीरीज की ऑडियो कैसेट की सेल 1 करोड़ तक पहुंच गई थी। पहले मुख्य भूमिका के लिए दीपक तिजोरी का नाम चयन किया गया था, लेकिन राहुल रॉय से मिलने के बाद महेश भट्ट ने राहुल को ही मुख्य हीरो के रूप में लिया और दीपक तिजोरी को सपोर्टिंग

ये सारी जानकारी के साथ प्रमिला भापसर के साथ बीरन गांव गुजरात से हमारे साथ हैं। सोन सिंह गिल दलजीत जी गांव लोहागढ़ ठाकुरबारा से जुड़े हुए हैं। और अगला जो संदेश है ओम प्रकाश राय उषा कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हमारे साथ हैं। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे प्रशांत संचित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश वर्मा प्रिंस निखिल छत्तीसगढ़ पलारी से हमारे साथ हैं। और हरजिंदर सिंह भाटिया अंजल भाटिया पप्पू जी हमारे साथ स्टेशन रोड जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं। ग्राम पंजोनिया जालौन से सत्येंद्र कुमार आदर्श सार्थक जी हैं। सुरेश यादव अनिता जी हमारे साथ नेहरू चौक पेठन से जुड़े हुए हैं। और अनारकली बाजार से सुनील पाठक कमला पाठक जी हमारे साथ हैं। नागांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरासी गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी जी हमारे साथ हैं। गुरमीत सिंह नीता जी साउथ एक्सटेंशन से जुड़े हुए हैं। और अगला जो संदेश है वो हांडी खेला जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा जी है हमारे साथ। हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार मनोज जी हमारे साथ हैं। सुरेश राठौर गांधीनगर गुजरात से हैं। संबलपुर काके से फागुन राम ज्योति यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप मक्कर जी का एक और संदेश आया है। और गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा जी हमारे साथ हैं। मोहम्मद फरमान जी मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। और अगला जो संदेश है पिपरिया से कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता जी का है। मोहम्मद सैदाबासी निगत परवीन और उनके पूरा परिवार ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से है। इंद्रनगर भवरपुर से राधेश्याम देवानगंज जी है हमारे साथ में। बटिंग रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारक अंजू जी हमारे साथ हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश पूनम है। भवरपुर बसना से गोविंदा हमारे साथ हैं। संजय डिंगिया नमन डिंगिया पार जी हमारे साथ बागपत उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। पहाड़गंज

मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले सोपान जी हमारे साथ है, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी हेमलता जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सफर में हम सफर बनने के लिए।

1990 की सदाबहार फिल्म आशिकी और उससे जुड़ी दिलचस्प दास्तान। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे किसी और यादगार फिल्म के अनसुने किस्से, शानदार गीत और उसके खूबसूरत से यादें। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, लेकिन कहीं जाना नहीं है। 2:30 पर भी आपके लिए खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर आएंगी प्रीति त्यागी और उसके बाद 3 आपकी और मेरी मुलाकात होगी प्रोग्राम मैथिली मेलोडीज में। तो अभी बहुत सारे रंग हैं हमारी इस फिल्मी दुनिया के, बहुत सारे रस हैं जो आप तक पहुंचाने। जुड़े रहिए आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। फिलहाल अपने दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों इस बुलेटिन में अमन देव। पहला खास खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड के 6 दिन दौरे लिए रवाना हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता राही लखां लोगों के जीवन में खुशहाली लियाने लिए सहकारिता मंत्रालय की शलाघा की है। ब्रिक्स दीयां नशा विरोधी एजेंसियां ते मुखियां दी मीटिंग अज गुवाहाटी विच शुरू हो गई है। सरकार ने कहा कि 104 करोड़ तो वध सेहत कार्डां नूं 93 करोड़ तो वध आयुष्मान भारत हैल्थ अकाउंट साहबां नाल जोड़िया गया है। ते फीफा फुटबॉल विश्व कप विच इंग्लैंड मैक्सीको नूं 3-2 नाल हरा के क्वार्टर फाइनल पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड के 6 दिन दौरे लिए रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वह राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के सदे से इंडोनेशिया का दौरा कर रहे हैं। यह दौरा दोहां देशों विचकार व्यापक रणनीतिक भाईवाली को होर मजबूत करेगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति साल 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह लिए मुख्य मेहमान वजो भारत आए सन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया विच वह राष्ट्रपति सुबियांतो नाल प्रबंधन मंदिर जाएंगे ते प्रवासी भारतीयों नाल भी गलबात करेंगे। इंडोनेशिया तो प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे ते जाएंगे। उन्हों का दौरा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भाईवाली नूं होर मजबूत करेगा। दोवें धिरां रक्षा ते सुरक्षा, व्यापार ते निवेश, सिक्ख्या गतिशीलता, उभरदियां तकनालोजियां, खेडां ते जनसंपर्क बारे चर्चा करनगियां। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया विच प्रवासी भारतीयों नाल भी मुलाकात करनगे। इस तों बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के सदे से ऑकलैंड जाएंगे। यह दौरा दौले संबंधा एक नवा हुलारा देगा। प्रधानमंत्री लक्सन ने पिछले साल मार्च में भारत का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्वी ते दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड नाल भारत की सांझ, भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर विजन और एक खुले ते मुक्त हिंद प्रशांत खेत्र लई भारत के दृष्टिकोण होर मजबूत करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले 5 सालों तो सहकारिता राही खुशहाली के मंत्र की पालना करके लखां लोगों के जीवन में बदलाव लियाने लई सहकारिता मंत्रालय की शलाघा की है।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इससे आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल खत्ते के तई नुक्ता नजर के साथ साथ मशरकी मुल्कों से राबते बढ़ाने की भारत की पॉलिसी को तकवीत मिलेगी। सरकार ने कहा है कि डिजिटल हेल्थ खदमात को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से ज्यादा हेल्थ रिकॉर्ड्स को आभा अकाउंट्स के साथ मुंसलिक किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ में आज शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में यूक्रेन के शहर कीफ में कम से कम 10 अफराद हलाक और 46 से ज्यादा जख्मी हो गए। इंग्लैंड मेक्सिको को 2-3 से शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच मर्दों के सिंगल्स में जबकि नाओमी ओसाका खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। रवानगी पर अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उनके दौरे से मशरकी मुल्कों से राबता बढ़ाने की भारत की पॉलिसी, महासागर नजरिए नीज आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल खत्ते के तई मुल्क के नुक्ता नजर को मजीद तकवीत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया के उनके दौरे से जामे कलीदी साझेदारी मुस्तहकम होगी, जिसे 2018 में उनके दौरे के दौरान नई बुलंदी पर पहुंचाया गया था। इंडोनेशिया के बाद जनाब मोदी मेलबर्न जाएंगे। वो ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी एल्बनीज की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि उनके इस दौरे से दिफा, सिक्योरिटी, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादले ख्याल के जरिए भारत ऑस्ट्रेलिया जामे कलीदी साझेदारी मुस्तहकम हो सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म वहां भारतीय बिरादरी के लोगों से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड जाएंगे। वो न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन की दावत पर यह दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले साल मार्च में न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म के भारत के दौरे के बाद बाहमी ताल्लुकात में जो तेजी आई थी, उनके इस दौरे में इक्तसादी, तिजारती और कारोबारी राबतों पर तवज्जो मरकूज करते हुए भारत से बाहमी ताल्लुकात

0: रोने का काम हमने किया है।
1: जनाब अमित शाह ने मजीद कहा कि पिछले पांच साल में इमदाद बाहमी निजाम को जदीद तर्ज पर ढालने, शफाफ बनाने और तकनीक पर मबनी मुसाबकत की निजाम बनाने की समत काबिल तारीफ काम हुआ है। जनाब अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके 125वें यौम पैदाइश पर याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारतीयता का जज्बा पैदा करने, भारत माता की ताजीम और मेरे जैसे करोड़ों पार्टी कारकुनों में भारतीय सकाफत की अहमियत के तई वक्फ कर दी थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अजीम रहनुमा थे जिन्होंने ये ऐलान किया था कि एक मुल्क में दो आईन, दो वज़ीरे आज़म और दो परचम नहीं हो सकते। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी साबिक मरकजी वजीर, मुमताज माहिर तालीम, बसीरत अफरोज मुफक्किर और कद्दावर कौमी रहनुमा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके 125वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी उन्हें खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी एक नजरिया साज मुदब्बिर, सरकर्दा स्कॉलर और मुल्क के एक पुरज़्म मैमार थे जिन्होंने मुल्क के इत्तेहाद, जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करने और कौमी यकजहती के तहफ्फुज़ की खातिर अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने कहा है कि 93 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत सेहत खातों आभा से 104 करोड़ से ज्यादा सेहत से मुतालिक रिकॉर्ड्स मुंसलिक किए जा चुके हैं। एक मजबूत डिजिटल अवामी सेहत इको निजाम की जानिब भारत के सफर में ये एक अहम पेशरफ्त है। आभा आधार की तरह 14 हिंसों पर मबनी एक मुनफरिद शनाख्ती नंबर है जो लोगों को एक वसीतर सेहत निजाम से महफूज तौर पर मुंसलिक करता है। इससे मरीजों को डिजिटल सेहत खिदमात तक रसाई में मदद मिलती है। वो इस नेटवर्क के जरिए अपनी तिब्बी जानकारी के साथ बीमा कंपनियों, सेहत की देखभाल के मराकज, डॉक्टरों और दीगर खिदमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। हुकूमत का मकसद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नेटवर्क को वसत देना है ताकि मुल्क भर के सभी मरीज और सेहत खिदमात का अहाता किया जा सके। इंतखाबी कमीशन ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में असेंबली की 3 सीटों के जिमनी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये जिमनी इंतखाबात बिहार में बांकीपुर हलके, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दातिया हलके के लिए कराए जाएंगे। इंतखाबी कमीशन ने मगरब बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए जिमनी चुनाव का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा के अरकान सुखविंदर शेखर रे, सुष्मिता देव और प्रकाश छी बराइक के मुस्ताफी होने के बाद ये सीटें खाली हुई हैं। भारत स्विट्जरलैंड के जेनेवा में सारिफिन के तहफुजाती कानून और पॉलिसी पर माहिरीन के बैन हुकूमती ग्रुप के नवे इजलास की सदारत करेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सारिफिन के उमूर, खुराक और तकसीम आमा की वजारत ने कहा है कि इजलास में रुकन ममालिक, बैन अवी तंजीमें, सारिफिन, तहफुजाती हुकाम, तालीमी इदारे और दीगर मुतालिका फरीकैन यकजा होंगे और सारिफिन के तहफ़ से मुतालिक कानून और पॉलिसी के सिलसिले में उभरने वाले मामलों पर बातचीत करेंगे। माहिरीन का कहना है कि बैन हुकूमती ग्रुप सारिफिन के तहफ़ से मुतालिक कानून और पॉलिसी पर तआवुन मुज़ाकरात के लिए आला बैन हुकूमती प्लेटफार्म है। सारिफिन उमूर के महकमे की सेक्रेटरी निधि खेरे इस इजलास की सदरनशी होंगी। वो सारिफिन के तहफ़ से मुतालिक बुनियादी आलमी तरजीहात के बारे में 3 रोज़ा बातचीत की सदारत करेंगे। सारिफिन के तहफ़ की अहम आलमी तरजीहात के सिलसिले में मुल्कों के माबेन तबादले ख्याल की रहनुमाई करेंगी। दिल्ली से नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: इम्तिहानात के निकास से मुतालिक एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 के इम्तिहान की फीस के रिफंड के लिए बैंक खाते की तफसीलात को अपडेट करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी

साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे।

0: छह दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई हैं।
2: सहकारिता मंत्रालय के

0: हमने किया है।
1: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
0: हमने

0: और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
3: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल

हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री माझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।

0: ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
1: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
2: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किया है।
0: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने

विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

दरअसल पैंते आकाशवाणी दिल्ली कना नेशनल न्यूज सर्विस प्रोग्राम लंगपिन मीडियम वेविका अचैस आकाशवाणी कारगिल कना सरिन्युत वास्पोत सुत निज नफेत संसु कसत एनसीआरटी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम यन मजत उमंग

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए, किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
0: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको

0: जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं।
1: जी
0: तो अजीत जी, क्यों न इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
1: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की।
0: जी
1: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
0: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
1: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
0: जी
1: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए?
0: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
1: जी तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
0: जी
1: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
0: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
1: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है।
0: जी
1: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
0: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है, लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
1: जी हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
0: बिल्कुल,
1: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
0: जी
1: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
0: जी ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृवृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
0: जी
1: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
0: श्रोताओं इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं, तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं, जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं,
1: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
0: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है, लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
1: एक बात और श्रोताओं, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है, तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
0: जी
1: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है, तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
0: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
1: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है, तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता।

0: गीता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
1: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
1: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।

0: Your attention, please. Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention, please. Air India announces.
1: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
2: हाँ बेटा।
1: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
2: यही कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते हैं।
1: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
2: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सूरीनाम जाना पड़ गया था।
1: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
2: हो सकता है कि...
3: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
2: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
3: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊं। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
2: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये है अब्दुल कादिर मोहम्मद फादल।
1: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम। अरे वहाँ श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुँचा दो।
2: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो। आओ
4: आओ, चलो
2: आओ।

0: मौका दे। तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूँ।
0: अच्छा अच्छा।

0: पार्डन अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों

0: ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
1: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। आदिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
2: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरो के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
0: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरो की कब्रें हैं।
2: कब्रें नहीं है, शव रखे हैं, जिन्हें ममी कहते हैं। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
1: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
2: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
0: कादिर, ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
2: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
0: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की ममी बनाई जाती थी?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था।
0: ओ,
2: इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
1: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
2: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
1: किस लिए?
2: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
0: अरे वो देखो, वो उतरने भी लगा।
1: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
0: अरे लो, वो उतर कर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा, शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
1: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
0: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
1: तो फिर चलिए।
0: हाँ तो आओ, चलो आओ, कादिर आओ।

0: कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल, देखिए काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती है।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: ओह शुक्रिया, मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है। बताओ कैसे?

0: हर साल पानी चढ़ता है?
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं?
1: हाँ।
2: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
0: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है, पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
0: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर...
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
1: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
0: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
1: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
0: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ बेकाबिल, इस सवाल का जवाब दो तो जाने।
1: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं, मैं पूछ कर बताऊंगा।
0: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: वाह,
1: कितनी भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
0: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ बेकाबिल, इस सवाल का जवाब दो तो जाने।
1: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं, मैं पूछ कर बताऊंगा।
0: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
1: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
0: वहां क्या है अंकल?
1: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
2: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
1: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
2: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
1: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवाकर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
0: पापा मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
2: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
0: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
1: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
0: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।

आधा भर से है। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्रीडिश पर उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस का अब आगाज होता है। तमाम सुनने वालों का खैर मकदम है।

नजर डालेंगे आज की मजलिस के प्रोग्रामों पर। अब से चंद ही लम्हों के बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मेरी पसंद और 3:30 पर कहकशां प्रोग्राम के तहत आज आप सुन सकेंगे गदर फिल्म की कहानी और नगमे। 4 बजे से आप फिल्मी मौसीकी का लुत्फ उठा सकेंगे। ये प्रोग्राम शाम 4:50 तक सुना जा सकेगा। शाम के 4:50 पर खबरें नशर होंगी और शाम 5 बजे आज की दूसरी मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नज़र आज की मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर।

मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रिडिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात जारी हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।

0: और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वजीर आजम ने कहा है कि इससे आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल खत्ते के तई नुक्ता नजर के साथ साथ मशरकी मुल्कों से राबते बढ़ाने की भारत की पॉलिसी को तकवीत मिलेगी। सरकार ने कहा है कि डिजिटल हेल्थ खदमात को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से ज्यादा हेल्थ रिकॉर्ड्स को आभा अकाउंट्स के साथ मुंसलिक किया गया है। रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में यूक्रेन के शहर कीफ में कम से कम 10 अफराद हलाक और 46 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। और इंग्लैंड मैक्सिको को 2-3 गोल से शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेशो खदमत है प्रोग्राम मेरी पसंद।

सपना अवस्थी और साथियों की आवाजों में ये नगमा आपने दुश्मनी फिल्म से सुना। अब सुनिए उदित नारायण और साथियों को, फिल्म है हम तुम्हारे हैं सनम।

अलका याग्निकुर साथियों को अभी आप सुन रहे थे फिल्म थी जुबैदा। इसके साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश है प्रोग्राम कहकशां।

फिल्म गदर के प्रोड्यूसर हैं नितिन केनी, डायरेक्टर अनिल शर्मा, गीत आनंद बख्शी, म्यूजिक है उत्तम सिंह का, हीरो सनी देओल, हीरोइन अनिशा पटेल। ये कहानी है हिंदुस्तान की तारीख में यादगार बन चुके दिन 2 जून 1947 की, जब वायसराय हाउस में हिंदुस्तान के दो हिस्सों में तकसीम किए जाने का ऐलान किया गया था। इसके एक हिस्से को हिंदुस्तान नाम दिया गया और दूसरे हिस्से को पाकिस्तान। इस बंटवारे ने पूरे मुल्क में गदर मचा दिया था। खौफ और दहशतगर्दी के उस माहौल में लाखों हिंदुओं और मुसलमानों को अपना घर बार और कारोबार छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाना पड़ा। ऐसे ही खौफनाक माहौल में मजबूर होकर हिंदुस्तान में रह रहे अशरफ अली खान को भी मुल्क छोड़ना पड़ता है। जब दहशतगर्द उनकी हवेली को आग लगा देते हैं तो अशरफ अली खान अपनी बीवी और बेटी सकीना यानी अमीशा पटेल को लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। बदहवास अशरफ जैसे तैसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लाहौर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचते हैं। अफरा तफरी के माहौल में अशरफ अली और उनकी बीवी तो ट्रेन में चढ़ जाते हैं, मगर भीड़ की वजह से सकीना स्टेशन पर ही रह जाती है। सकीना घबरा कर जब ट्रेन की तरफ भागती है तो वो जख्मी होकर बेहोश हो जाती है। होश आने पर जब वो नल के नीचे बैठकर नहाने लगती है तो कुछ मनचले शोहदे जवान खूबसूरत सकीना को देखकर उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं। सकीना घबरा कर वहां से भागने लगती है। तभी एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह यानी सनी देओल सकीना को उन दरिंदों से बचाता है। इस गदर में इस ट्रक ड्राइवर के खानदान के लोग भी मारे गए थे। तारा सिंह सकीना के कॉलेज की कैंटीन के लिए सामान लाने का काम करता था। सकीना को उन दरिंदों से बचाते वक्त तारा सिंह की नजर एकाएक सकीना के हाथ में पकड़े हुए कांच के गिलास में बंद ताजमहल पर पड़ती है, तो तारा उसे देखते ही गदर से पहले की माजी की यादों में खो जाता है। ये वही तोहफा था जो तारा सिंह ने सकीना को कभी कॉलेज में दिया था। माजी की यादों में खोते हुए तारा सिंह को वो मंजर याद आता है जब सकीना के कॉलेज का सालाना जलसा था। गाने का बेहद शौकीन तारा सिंह भी इस फंक्शन में गाना चाहता था, मगर लड़कियां मजाक में तारा सिंह से कहती हैं कि इसके लिए तो उसे उनके म्यूजिक टीचर से पूछना पड़ेगा। वो तारा से कहती हैं कि उनकी म्यूजिक टीचर थोड़ा ऊंचा सुनती हैं, इसलिए वो जरा जोर से बोले। लड़कियां सकीना यानी अनिशा

पटेल को ही चश्मा वगैरह लगाकर बतौर म्यूजिक टीचर तारा से बात करने को कहती है। तो सकीना तारा से मजाहिया अंदाज में बात करती है और उसे गाना सुनाने को कहती है।

सिंह का गाना सुनकर सकीना बहुत खुश होती है और उसे अपनी हरकत के लिए माफी मांगती है। वो कॉलेज फंक्शन में प्रिंसिपल की इजाजत लिए बिना ही तारा सिंह को स्टेज पर गाने के लिए बुला लेती है और तारा सिंह भी गाता है।

का गाना सुनकर कॉलेज के स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। तारा सकीना का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे स्टेज पर गाने का मौका दिया। इसी बात से खुश होकर तारा सिंह अगले दिन सकीना को कांच के गिलास में बंद ताजमहल का एक खूबसूरत तोहफा देता है और वही तोहफा अब इस कदर के हालात की मारी सकीना के हाथ में था। तारा माजी की यादों से बाहर आता है और डरी सहमी सी सकीना को नजर भर कर देखता है। वो उसे अपने घर ले आता है मगर सकीना के मुसलमान होने की वजह से दहशतगर्द तारा के घर उसे मारने आते हैं, तो वो बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला करके सकीना की हिफाजत करता है और सकीना को बचाने के लिए उसकी मांग अपने खून से भर देता है और दंगाइयों से कह देता है कि अब सकीना सिखनी हो गई है। ये देखकर दंगाई वहां से चले जाते हैं। इस तरह तारा सिंह सकीना को कई बार दंगाइयों के कहर से बचाता है तो सकीना के दिल में भी तारा सिंह के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। सकीना को जब अपने बिछड़े माँ बाप की याद आती है तो वो रोने लगती है। तारा उसे तसल्ली देता है। इसी बीच तारा सिंह की ताई जब तारा के घर सकीना को देखने आती है तो वो तारा सिंह से उसे मुसलमानों के मोहल्ले में छोड़ आने को कहती है मगर तारा सिंह ऐसा नहीं करता। तभी दंगाई फिर दहशत फैलाते हैं तो सकीना डर जाती है। सकीना को दुखी देखकर तारा सिंह उसे उसके अब्बू अम्मी के पास लाहौर छोड़ जाने की बात कहता है। तारा उसे कहता है कि लाहौर जाने पर उसे उसकी याद तो आएगी ना। तारा की बात सुनकर सकीना जज्बाती हो जाती है। उसके दिल में अब तारा की मोहब्बत अंगड़ाइयां लेने लगती हैं। वो तारा सिंह से शादी करने को कहती है और अब वो लाहौर जाने से भी मना कर देती है। तारा सिंह सकीना से शादी कर लेता है। इस खुशी के मौके पर तारा सिंह के यार दोस्त नाचने गाने लगते हैं।

शादी के बाद सकीना एक बच्चे की मां बनती है। दोनों अपने बेटे का नाम चरणजीत रखते हैं। सकीना तारा सिंह और अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी। तभी एक वाकया घटता है। सकीना एक दिन अखबार में अपने अब्बू का फोटो देखती है, जो अब पाकिस्तान के मेयर बन चुके हैं। अपने अब्बू अम्मी के जिंदा होने की खबर से सकीना बहुत खुश हो जाती है। तारा सिंह अशरफ अली खान का फोन नंबर मालूम करके सकीना को देता है। सकीना फोन पर उन्हें अपनी शादी और बच्चे की बात बताती है। अशरफ अली खान सकीना को लाहौर बुलाना चाहते हैं। वहां जाने के लिए सकीना और तारा सिंह का पासपोर्ट और वीजा बनवा दिया जाता है, मगर तभी तारा का दोस्त गुल्लू बताता है कि चरणजीत के पासपोर्ट पर साहब के दस्तखत होने हैं और साहब 3 दिन बाद आएंगे। तारा सकीना से कहता है कि वो 3 दिन बाद बेटे को लेकर पाकिस्तान आ जाएगा। वो सकीना को अकेले ही हवाई जहाज में बैठा देता है, मगर भोला भाला तारा इस बात से एकदम अनजान था कि ये सब किसी साजिश के तहत किया जा रहा है, ताकि तारा सिंह से सकीना को दूर किया जा सके। इधर लाहौर आने पर सकीना अपने अम्मी अब्बू से मिलकर बहुत खुश होती हैं। अशरफ अली खान को अब हिंदुस्तान और वहां के बाशिंदों से नफरत हो चुकी है, इसलिए वो नहीं चाहते कि तारा सिंह सकीना से मिल पाए। वो सकीना की शादी अपने दोस्त सरफराज के बेटे सलीम से करना चाहते हैं। जब सकीना को ये बात पता चलती है तो वो कहती है कि वो तारा को कभी नहीं भूल सकती। वो उसका शौहर है, उसके बच्चे का बाप है। वो कहती है कि तारा जैसा इंसान तो पूरी कायनात में नहीं है, वो उसे लेने जरूर आएगा। इसी बीच ईद का त्योहार आता है तो सब खुशी में गाते हैं।

सकीना तारा सिंह के बिना बहुत बेचैन है। उसकी जुदाई में वो बहुत तड़पती है, इसलिए वो अब वहां से जाना चाहती है। मगर उसके अम्मी अबू उसे अपने खानदान की इज्जत का हवाला देते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हैं। मगर सकीना न तो दूसरी शादी करना चाहती है और ना ही पाकिस्तान में रहना चाहती है। उसकी जिद देखते हुए उसके अब्बू तारा सिंह का वीजा रुकवा देते हैं। मगर तारा सिंह कहता है कि कोई भी ताकत उसे सकीना के पास जाने से नहीं रोक सकती। इधर तारा और उधर सकीना दोनों परेशान हैं।

सकीना के अब्बू जब उसकी शादी जबरदस्ती सलीम से करने की कोशिश करते हैं तो सकीना काजी के सामने निकाह से इनकार कर देती है। उधर तारा सिंह अपने दोस्त कुल्लू की मदद से जैसे तैसे करके पाकिस्तान पहुंचता है। लाहौर जाकर जब वो सकीना से मिलता है तो सरफराज उससे सकीना को छोड़ देने को कहता है, मगर तारा सिंह के इनकार करने पर सरफराज के आदमी तारा सिंह पर हमला कर देते हैं। अशरफ अली खान भी तारा सिंह को जान से मारने की धमकी देते हैं, मगर तारा सिंह कहता है कि वो गदर का एक वक्ती जुनून था, मैं उस नफरत को भुला चुका हूं, आप भी भुला दीजिए। अशरफ अली तारा सिंह को बिना वीजा के पाकिस्तान आने के इल्जाम में जेल में सड़ाने की धमकी देते हैं, मगर कहते हैं कि अपनी बेटी की खुशी की खातिर वो ऐसा नहीं करेंगे। वो तारा सिंह से इस्लाम कबूल करने और पाकिस्तान में ही रहने की शर्त रखते हैं और उसे इस बारे में सोचने के लिए एक रात का वक्त देते हैं। सकीना से बेपनाह मोहब्बत करने वाला तारा सिंह उनकी सभी शर्तें मान लेता है, मगर जब उसे हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलने को कहा जाता है तो वो मना कर देता है। ये सुनकर अशरफ अली खान के आदमी उस पर फिर से हमला करते हैं, मगर मौका देखकर तारा सिंह सकीना और बेटे चरणजीत को लेकर वहां से भाग जाता है। अशरफ अली खान के आदमी तारा सिंह और सकीना को ढूंढते हुए उनका पीछा करते हैं। अशरफ अली खान अपने मातहतों को हुक्म देते हैं कि हिंदुस्तान जाने के सारे रास्ते बंद करवा दिए जाएं ताकि तारा सिंह सकीना और बच्चे को लेकर न जाने पाए। उधर सलीम और उसके साथी भी तारा सिंह को ढूंढ रहे थे। आखिर में जिस ट्रेन में तारा सिंह और सकीना जा रहे हैं उसी में आग लगा दी जाती है। सलीम कहता है कि सकीना अगर मेरी नहीं हो सकती तो वो किसी की भी नहीं हो सकती। अशरफ अली खान तारा को मारने के लिए हेलीकॉप्टर से गोली चलाता है तो वो गोली सकीना

को लग जाती है। ये देखकर तारा सिंह आग बबूला होकर अशरफ अली खान को बहुत मारता है। सकीना गोली लगने से बेहोश हो जाती है तो तारा सिंह उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। बेटी को जख्मी देखकर अशरफ अली खान को अपने किए का बहुत पछतावा होता है। वो सकीना के होश में आने पर उससे माफी मांगता है और सकीना और तारा सिंह की बेपनाह मोहब्बत देखकर अपनी हार मान लेता है। तारा सिंह और सकीना हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं।

कहकशां प्रोग्राम के तहत आप सुन रहे थे गदर फिल्म की कहानी और नगमे। कहानी को तरतीब दिया था राज हेमानी ने और रावी थी सूरजा साहिब। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशरियात दस्तियाब है मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आइए सुनते हैं फिल्मी नगमे।

0: लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में ये नगमा था आईना फिल्म से। फिल्मी नगमों के प्रोग्राम की अगली पेशकश अमित कुमार, अलका याग्निक और मनहर को सुनिए, फिल्म है खून का कर्ज।
1: कभी

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये नगमा अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था एक दूजे के लिए। फिल्मी नगमों के प्रोग्राम की अगली पेशकश आपकी नज़र कर रहे हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण को। सुनिए फिल्म है बेटा।

अनुराधा पौडवाल और मंगल सिंह की आवाज़ों में ये नगमा अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी बहार आने तक। प्रोग्राम की अगली पेशकश आपकी नज़र है अलीशा चिनॉय की आवाज़ में। फिल्म का नाम है विजय पथ।

0: मनहर उदास कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ों में ये नगमा सौदागर फिल्म से था। इसके साथ ही आज का फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम अब ख़त्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है।

0: तुर्किया में नेटो की आम सरबरा मीटिंग से एक दिन कबल ये हमला किया गया है, जिसमें अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप के शिरकत करने का इम्कान था। यूक्रेन की फजाइया ने कहा है कि रूस ने इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। ये हमला यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की की जानिब से इस बारे में खबरदार किए जाने के बाद हुआ है कि इंटेलिजेंस ने कहा है कि रूस एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। हुकूमत ने कहा कि 93 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत सेहत खातों, आभा से 104 करोड़ से ज्यादा सेहतमंद से मुतालिक रिकॉर्ड्स मुंसलिक किए जा चुके हैं। एक मजबूत डिजिटल अवामी सेहत इको निज़ाम की जानिब भारत के सफर में ये एक पेशरफ्त है। आभा आधार की तरह 14 हिस्सों पर मबनी एक मुनफरद शराख्ती नंबर है, जो लोगों को एक वसी तर सेहत निज़ाम से महफूज तौर पर मुंसलिक करता है। इससे मरीजों को डिजिटल सेहत खिदमत तक रसाई में मदद मिलती है। वो इस नेटवर्क के जरिए अपनी तिब्बी जानकारी के साथ बीमा कंपनियों, सेहत की देखभाल के मराकज, डॉक्टरों, दीगर खिदमत तक रसाई हासिल कर सकते हैं। हुकूमत का मकसद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नेटवर्क को वसअत देना है, ताकि मुल्क भर के सभी मरीज और सेहत खिदमत का अहाता किया जा सके। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुज़श्ता 5 साल के दौरान इमदाद बाहमी के जरिए खुशहाली के मंत्र पर अमल करते हुए करोड़ों लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाने पर इमदाद बाहमी वजारत की सताइश की है। इमदाद बाहमी वजारत के 5वें योम तासीस के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि इमदादी बाहमी शोबे और मुल्क भर में 8.5 लाख से ज्यादा इमदाद बाहमी इदारों से वाबस्त 30 करोड़ अफराद के लिए आज बहुत शुभ दिन है। उन्होंने कहा कि इस दिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरकार में इमदाद बाहमी की एक अलग वजारत कायम करने का फैसला किया था। जनाब अमित शाह ने मजीद कहा कि पिछले 5 साल में इमदाद बाहमी निज़ाम को जदीद तर पर ढालने, शफाफ बनाने और तकनीक पर मबनी मुसाबिकती निज़ाम बनाने की सख्त काबिल तारीफ काम हुआ है। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस साल सरकार ने इमदाद बाहमी इदारों के लिए दर्जाबंदी से मुतालिक एक फ्रेमवर्क का आगाज किया है। जनाब अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके 125वें योम पैदाइश पर याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारतीय का जज्बा पैदा करने, भारत माता की ताजीम और मेरे जैसे करोड़ों पार्टी कारकुनों ने भारतीय सकाफत की अहमियत के लिए वक्फ कर दी थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अजीम रहनुमा थे, जिन्होंने ऐलान किया था कि एक मुल्क में 2 आइन, 2 वजीर आजम और 2 परचम नहीं हो सकते। पुरी में आलमी सतह पर मकबूल रथ यात्रा के लिए वसी पैमाने पर तैयारियों का सिलसिला जारी है। ऐसे में उड़ीसा हुकूमत अपनी इंतजामी तैयारी के आखिरी मरहले में है। वजीर आला मोहन चरण मांझी ने आज रथ यात्रा तालमेल कमेटी के साथ हतमी मीटिंग की सदारत की और इस सालाना यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम को यकीनी बनाने खातिर सभी महकमों को हिदायत जारी की। वेनेजुएला में जो 2 जल्जले आए थे उनमें मरने वालों की तादाद 3,342 तक जा पहुंचे, जख्मियों की तादाद 16,740 हो गई और बेघर अफराद की तादाद बढ़कर 17,000 हो गई है। मैक्सिको सिटी में अस्टिका स्टेडियम में इंग्लैंड मैक्सिको को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल पहुंच गए। इस स्टेडियम में अब तक खेले गए 89 मैचों में से सिर्फ 2 मैचों में मैक्सिको को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन इंग्लैंड ने उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपना दबदबा बरकरार रखा। विंबलडन टेनिस में कल रात सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और उसके खिलाड़ी रोमन सुफियान को हराकर मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल पहुंचे। क्वार्टर फाइनल में अब उनका मुकाबला फिलिक्स ऑगिस एसिलाइन या अलेजेंड्रो डिविकिंग फोकिना से होगा। खास खास खबरें एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे के पहले मरहले में जकार्ता पहुंच गए हैं। वजीर आजम ने कहा कि उनके इस दौरे से आजाद और खुले भारत बहरुल खत्ते के तई नुकतः नजर के साथ साथ मशरकी मुल्कों से रबते बढ़ाने की भारत की पॉलिसी को तकवीत मिली है। ईरान के शहर तेहरान में साबिक रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे में कसी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। शाम के 5 बजने को है हमारी आज की दूसरी मजलिस का वक्त अब खत्म होता है। रात 9:15 पर उर्दू सर्विस की अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात लेकर हम एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मजलिस की नशरियात लेकर हम एक मरतबा फिर हाजिर

सबको खूब मालूम है कि एक ही माँ के पेट से पैदा होने वाले बच्चे आपस में बराबर हमरंग और एक ही किरदार के मालिक नहीं होते हैं। कोई काला तो दूसरा गोरे, एक सुर्ख तो दूसरा सफेद, और कोई दुबला पतला तो दूसरा मोटा ताजा, एक हर काम में ऑल राउंडर तो दूसरा बेकार अनजान, एक आलिम माहिर तो दूसरा जाहिल महज। तो उनकी ये तमाम इख्तलाफात उनके बरादराना मोहब्बत पर असर अंदाज नहीं हो सकते। मौला अमीर अल-मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम फरमाते हैं, अय्युहल फाखिरु जहलन बिन नसबी इन्नमन नासु लि उम्मिन वलि अबी हल तराहुम खुलिकु मिन फिज्जतिन अम हदीदिन अम नुहासिन अम जहबी हल तराहुम खुलिकु मिन फजलिहिम हल सिवा लहमिन व शहमिन व असबी انما الفخر لعقل ثابت وحياء وعفاف وادب ان نادانی سے حسب نسب پر فخر کرنے والا شخص معلوم ہے کہ تمام لوگ ایک ہی ماں اور باپ کے نسل ہیں کیا تم خیال کرتے ہو کہ یہ لوگ سونا چاندی لوہا اور تانبے سے پیدا کیا ہے کیا تم گمان کرتے ہو کہ لوگ शराफत ही के साथ पैदा किए गए हैं? क्या इंसान पैदाइशी तौर पर गोश्त चर्बी और आसाब के सिवा कुछ और अनासिर से बने हैं? फख्र तो सिर्फ ना सिर्फ अक्ल सलीम हया अफत परहेजगारी और अदब का नाम है। अगर आप एक दूसरे पर सिबकत लेना, एक दूसरे पर फोकियत तराशी करना, एक दूसरे पर रिश्क लेना चाहते हैं तो रिश्क और मैदान की मुसाबिकत की मैदान सही और जायज मुसाबिकती मैदान तो नेक आमाल अखलाक हसना और खुलूसियत की रूप में आपके सामने मौजूद है। और इरशाद बारी तआला है, फस्तबिकुल खैरात, नेक आमाल के मैदान में मुसाबिकत ले लो। तो हम एक ही मुल्क के शहरी हैं और किसी कौम को दूसरे कौम पर कोई फोकियत गर्दाने की जरूरत नहीं है और न किसी को एहसास से कमतरी की एहसास की जरूरत है, बल्कि सब भाई भाई हैं। हम सब इसी महबूब मुल्क के शहरी हैं, सपने इसी मुल्क की दाना पानी पर जिंदगी गुजारे हैं। एक ही जिस्म के आजा व जवारे हैं, कोई सर है तो कोई पैर, कोई बाजू तो कोई दिल, कोई आंख तो दूसरा दिमाग का काम अंजाम देता है। और इस जिस्म को कमजोर और खोखला बनाने के लिए जहरीली जरासीम का काम तअस्सुब, मुनाफिरत, फिरका परस्ती और मुनाफिकत जरासीम में मोहलिक का काम अंजाम देता है और इस जिस्म को रोज बरोज कमजोर और लागर बना देता है। इन्हीं से इत्तेहाद का इजाला हो सकता है।

दरअसल पहनते सदाकत प्रोग्राम यानी न्यूत पिन मीडियम वेवी का अच्छा साकाश्वानी कारगिली कना जरिन्यूत कसता अच्छी देरिंग प्रचुपत भी प्रोग्राम में छिरपोला यन मजहत

0: जिन शाक सब्जियों को उदारता पूर्वक उत्पन्न करती है, इन्हीं में से एक विशेष उपयोगी वस्तु है गाजर। गाजर को उसके प्राकृतिक रूप में ही अर्थात कच्चा खाने से ज्यादा लाभ होता है। गाजर स्वाद में मधुर, कसैली, हृदय के लिए हितकर, रक्त को शुद्ध बनाने वाली, पुष्टिवर्धक, दस्त को बांधने वाली, मस्तिष्क एवं नस नाड़ियों के लिए बलप्रद है। ये अफारा, बवासीर, पेट के रोगों, सूजन, खांसी, पथरी, मूत्रालपता तथा दुर्बलता का नाश करने वाली है। गाजर के बीज पचने में काफी भारी होते हैं। कैल्शियम और कैरोटीन की प्रचुर मात्रा होने के कारण छोटे बच्चों के लिए ये एक उत्तम आहार है। गाजर में आंतों के हानिकारक जंतुओं को नष्ट करने का अद्भुत गुण है। इसमें विटामिन ए भी काफी मात्रा में पाया जाता है, अतः नेत्र रोग में भी लाभदायक है गाजर। गाजर रक्त शुद्ध करने वाली है। 10-15 दिन केवल गाजर के रस पर रहने से रक्त विकार, गांठ, सूजन तथा पांडु रोग जैसे त्वचा के रोगों में बहुत लाभ होता है। गाजर में लौह तत्व भी प्रचुरता से पाया जाता है। खूब चबा चबा कर गाजर खाने से दांत मजबूत, स्वच्छ और चमकीले होते हैं तथा मसूड़े मजबूत होते हैं। गाजर के रस का नित्य सेवन करने से मस्तिष्क की कमजोरी दूर होती है। गाजर का सूप दस्त होने पर लाभदायक होता है। अरुचि, अपच आदि रोगों में गाजर के रस में नमक, धनिया, जीरा, काली मिर्च, नींबू का रस डालकर पिए बहुत लाभ होगा, लेकिन ये प्रयोग 2 माह तक अवश्य करें, तभी आपको लाभ दिखाई देगा। पोषक तत्वों के लिहाज से गाजर एक अत्यंत समृद्ध खाद्य पदार्थ है। ध्यान रहे, गाजर को छीलकर या खुरचकर नहीं खाना है, क्योंकि गाजर के पोषक तत्व छिलके के नजदीक ही होते हैं, जो छिलका खुरचने पर बाहर निकल जाने से शरीर को नहीं मिल पाते हैं। गाजर को बिना छीले केवल धोकर साफ करके उसका रस निकालकर पीने से बहुत लाभ होता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो गाजर का रस बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए बहुत उपयोगी है। गाजर चबाने से मुंह में लार ज्यादा बनती है। इससे जरूरी एंजाइम, खनिज पदार्थ और विटामिन मिल जाने से भोजन शीघ्र पच जाता है। यदि भोजन करने के तुरंत बाद एक गाजर धोकर खूब चबाकर खाई जाए तो अन्य लाभों के अलावा मुंह के कीटाणु शीघ्र नष्ट हो जाते हैं तथा दांतों के मध्य छिपे भोजन के कण भी बाहर निकल जाते हैं। इस प्रयोग से दांतों का हिलना, मसूड़ों से खून आना भी रुकता है। गुर्दों और मूत्राशय को बल प्रदान करने में गाजर का महत्वपूर्ण योगदान है। गाजर का ताजा रस अल्सर और कैंसर जैसे रोगों में कमी लाता है। ये सभी प्रकार के संक्रमण को रोकने में मददगार बनता है। कुछ लोगों को अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है, ऐसे में एक प्रयोग करके देखें। गाजर के रस में पालक का रस और थोड़ा नींबू का रस डालकर पीना चाहिए। इस मामूली से उपाय से कब्ज दूर हो जाता है। गाजर का उपयोग कच्चा खाकर, पकाकर या उबालकर अथवा सूप बनाकर या फिर रस निकालकर किया जा सकता है। इतने सारे लाभ हैं गाजर के, आप भी उपयोग कीजिए और स्वस्थ रहिए।
1: दरअसल पायंतेस प्रोग्राम के निर्णय पिन्नर देलुक्सी हागो मीडियम वेविकां अचेस आकाशवाणी कारगिली कना जरिन्युत वक्सपोत सुत अगाने मिनट समचु सोगासंसु कसता प्रोग्राम के मजद शर्बा नचुं प्रोग्राम प्रचुखन पैन अर्चो खतीजा पानो प्रोग्राम प्रोड्यूसर गुलजार हुसैन
2: السلام علیکم یقبو چندرا وقبو فیتوغی بجاغا نفیت آکاش ونی کرگیلی کنا شربنا جوی پروگرام پو جو بیس لکھورے نا ارچو ختیجا ینگ سرسی گنتانا اس کا تو چنیود نگی چونس نا جونا سلام پو فرد مو جن سونشیگ ایلی پروگرام اس نابین جوک سود کھن اچھی نون مون کا کافون ان پیسی سا شربنا چونی انتان گار گار جوک سود نانان میت سن میت رگامو سن مونم بو جوک سی دک دک کس تا دیرین سوک ختوس پونگتی ورلڈ زونوسس ڈے

dirgem na yantan sapu trisigon lepchuget rihana batulikana social media benefits and challenges kurla kasata program pula guzukbet World Zoonosis Day har saal July 6 dijakpo malla khuma chachuk ya dijakpo malla khume tuntak pokhurang dya insu ki din na teskurla hagu tangchas gao ngatam bilsung sikana ngata insarna bierbatsuk अब जूनोसिस खोरंग जन्ना दुचोस नचे इंचु गाउ ngatini norbalaw ne kanangati bilsons ne kananga insan la berche jinchu space la khona rabies re bird flu re swine flu अब covid 19 ni khorang ata suspect pu khorang ata bilsons se kanai un khane jo min mang ata ebola re din na tun ga mang ata bilsons se kanai yani ngati norbalaw ne kananga ata berche jinchu अब दिजे को 6 जुलाई चे मनाई बसिन जेंडगतुन 6 जुलाई 1885 नु लुईस पाश्चर इज पहली बार इंसान जिगा रेबीसी वैक्सीनेशन पु तंगमा छखने चु गाउंगाती मेडिकल हिस्ट्री नु छुखो कामयाबी इन मेन चु और दी रेबीसी इंजेक्शन पुस बसे छिमी थी के मीमा सुनिए स्ट्रोक बचाई छा छखने चु येले प्रोग्रामस नाबेन युथ खन शेरबन चुन दांदरी मियुल पैनुक जुचोक सुखपो नदरी खचे गयो तेंचुम जैसे गते जरसां रेबीज रे बर्ड फ्लू जरे स्वाइन फ्लू जरे दुना इबोला जरे दुन गामा गते जोनोटिक डिजीज यां गते सिचा सेंचो गते जरसां की दी जोनोसिस खोरां जर नकातुन गते देन नत प्लेजिस गाउं गता गती नोरबलों ने कना इंसान ला बेर्चे सेन और कभी कभी गता इंसान ने कना नोरबलों ला बेर्चे सेंचुम छना दू गता सुई कना गता योचा सेंचु जे चिबा से योचा सेंचु ना सबसे पहला ना गता वायरस वायरस कना बेर्चे सेंचु यंग दाना डोमेन मा गता बैक्टीरिया कना योचा सेंचु पैरासाइट कना योचा सेंचु दुना फंगाई कना योचा सेंचु देसे गता सगर तक्स पा होता कि गता रेबीज जे नकातुन गते जरबतान की खीस थाम ना रेबीज वैक्सीनेशन तांग माजरे या बिलास्टात नजरे छनकातन अदुर गता बिलसोंस इना छनकातन अदुर चियो जसे जन जसे गते रेबी सिंह गते स्पेरा तानकातन गता वायरस यो मचुक रेबीज वायरस जरे गाउस सिंह गाउस चिबा जसे जुना गता खिस थाम नकातन गते ओदे असर पु गति सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे का छछा जिन जु गाउस बसे गता खचेगा जैसे खिस सोतम नकातन पागल छजर बिन तो अचानकातन ओदो गति सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे का अगर खोस इफेक्ट कातन बा नकातन ओदे वजह से गता खोस गता स्वताप ना या शू नकातुन टत नकातुन अदि वजह से कंगाती गता दी बीमारुन गता छछा सिंचो अब दू छा नकातुन गता ची छछा सिंचना गता ची ची सेंटम्स रिंगता थोचा सिंचना सबसे पहला नंगता बुखार छछा सिंचो दुमिन मंगता ग्वाजर मोचा सिंचो दुमिन मंगते गोगांजर मोचा सिंचो दुमिन मंगता कमजोरी गता महसूस छछा सिंचो खोखछा सिंचो गता उल्टी उचा सिंचो यान दुमिन मंगता डायरिया छछा सिंचो अब गता सिम्टम्स सुंग छन कतुन गतस चि बार क्वेश्चन सिन ता कि गता दि इना तुने कन गता स्ट्रोंग से लुक्स जन कतुन दिना तुने कन गता स्ट्रोंग से लुस पे मिना सबसे पहले ला खखन चिन गता सफाई मना खया जक पर क्वेश्चन सिन जो डोमेन मा गतस राई गतस सोसियोट पे देबे सुंग सुन ला वैक्सीन पो टाइम का ता मार क्वेश्चन सिन जो गा गतस नोरबलांग से लख पे थु सरिया पो ना गतस गति लख पो राई लख पो देमो बसे क्रोर क्वेश्चन सिन जो अगर गा बिल्सों से या नोरबलांग से या बिलाजर खीजर गचुस नाता बिल्सों से या रा अगर सो तब ना या सिक्रेशी के या तद नकातुन देर गम ना या पता छु कि ngara फीवर ngara बुखार छ खन छ सो दुमिन मा या रा उल्टी खन छ छ नकातुन या रे गुस्परी डॉक्टर नबो कंसल्ट बार कोशिश इन सो छना दुमिन मा गाता गा नोरबलांग से या जर्मो उसन नकातुन ओदन नबो गाता थुगिन मे दुख चाय यानी चंग लास्ट मेट पतोन मेट पंगाता ओदन नबो मिथो पर गोशे जिंचो दुमिन मा दना नोरबलांग पो या नोर इना बलांग इना बिला इना बिया इना कातुन ओदन ला अगर जर्मो उसे जर्मो बियारे उन नकातुन ओदन गते लुखसो जा पर गोशे जिंचो छना वोल जोनोसिस डेस गाता दिया इतो फिंदो कि गाता सबसे पहला ना गाता इंसान नन में छन में लूस पर गोशे जिंचो देर यम ना गाती नोरबलोन गाते सोसियोत खाने दे बिल्सुन सुन नन में छन में खुई सिहत पु छना कातुन देखना गाते स्नती माहौल पुर देमो बसे जागना कातुन गाता सुना सुना बोर देमो बसे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ

0: वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा है कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषी व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंध संस्थानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने का अनुमान है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ದರಸಪಾಯಂತೆಸ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ದೆಹಲಿ ಕನ ಹಿಂದಿನ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಖಬರೊಂದ್ಲಾಂಗ್ ಎನೆನುತ್ ಪಿನ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೈವಿಕಾಂಗ್ ಅಚಸ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಾರ್ಗಿಲಿ ಕನ ಸೆರೆನುತ್.
1: पुलिस
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है. रुकिए वरना घर आ जाएंगे.
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए. आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो.
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो बन जाओगे.
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए. अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा.
1: जेल तो तुम जाओगे. तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है. डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है. इसीलिए डर खौफ ना करें. पुलिस, बैंक, आरबीआई वगैरह के नाम पर आने वाले साइबर मुजरिमों के फोन या वीडियो कॉल से होशियार रहें. उन्हें पैसे ना भेजें बल्कि फौरन पुलिस में शिकायत करें.
3: हेलो मम्मा.
1: हाय.
4: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.

0: बहुत फनकेन जरे अति शोमा चिक चिक जरे हान
1: कसा
0: यहाँ प्लांट चिक चिंग आता जरे अति कारको ला सोक सांग आता तो चिन अति सिबक थान जरे सोचो
1: कसा
0: गालंग आते शर्मा जरे सोचो यहाँ अति जगह खचे छाल दम जरचिन अति लद्दाख कोरिया नुक अलग अलग अति अनि लोकल मिंग सोचो साइंटिफिक मिंग को जरे नगा तो गाते ही फॉफिजन साइंटिफिक मिंग पुगाते के जरे क्योंकि देखो अति यंगर जनरेशन ला यो जो पता छा बहुत जरूरी है क्योंकि दी प्लांट्स स्कोर ला आप एकेडमिक रिसर्च में भी जा सकते हो अपना एक करियर भी बना सकते हो प्रोफेशनल करियर जो है जिन दक्षण सोचो मेडिसिनल प्लांट्स कुरी कहते अगर का तो दी कुरी कहते दक्षा एंटरप्रेन्योरशिप सोचो स्टार्टअप का तल नंगा तो बहुत आप इकोनॉमिकली काफी यानी स्ट्रांग हो सकते अप हो सकते हो दी प्लांटिंग कहते का तो मेडिसिनल वैल्यू कहते जर नगा तो दी प्लांट पो यानी रिच इन ओमेगा जो ओमेगा 3, 6, 7, 9 सोचो मतलब अक्सर अति मार्केट में फिश हो था फिश को हम लेते हैं हालांकि बहुत सारे फॉक्स जो है मैक्सिमम मीज ना खाली मियाँ जिम्बो सर बने से लेकिन ये नंगोज बच्ची हो ओमेगा हा चना पढ़ा लिखा मेरा पता हो जा जिनकी ओमेगा सम्स इम्पोर्टेंट जिंदर सोचू अच्छा यदि ओमेगे 3, 6, 7 और 7 और 9 जो सोचू दी कॉन्सेंट्रेशन पो अराउंड ना का तो अति दीसी बक्तों ने बेरीज देखो यदि मरपोर या डिफरेंट कलर्स के सर में पीली जिन हाँ और दी डिफरेंट कलर्स के होते हैं ऑरेंज कलर या रेड कलर हो सो भाई और दी बेरिन खोरंग का तो लेन नगा तो बेरी चिकचिक हो रहा है गाते से नगा तो फिश ही 3 टाइम्स ज्यादा ओमेगा हो चास सोचो यहाँ जिस की खोज नगा तो अच्छा अगर हम वाइटमिन दिन निकलता नगा तो वाइटमिन ए हो चास बी हो चास सोचो वाइटमिन सी कॉन्सेंट्रेशन मन ज्यादा हो चीज वाइटमिन ई हो चीज एंटी ऑक्सीडेंट जरा सोचो अच्छा दी वाइटमिन सी का तुम्हारे सर नगा तो अति नींबू लेने दे या ऑरेंज लेने सोचो कहते हैं कि 10 to 15 times बेरी चिकचियानो सोचो उदे वाइटमिन सी कॉन्सेंट्रेशन पर ज्यादा हो जाने कंपेयर टू अति नींबू जरें या अति संतरा वंतरा जरें सोचो तो उदे अति कॉस्टली बाजार में जो आपको मिलते हैं फ्रूट्स उदन अति क्यों से खामे अति यूज बेर कहीं ना कहीं हेल्थ कॉन्शियस होकर लेते हैं अच्छी बात है लेकिन दी बेरी हमें सबसे इंपॉर्टेंट यानी वाइटमिन सी और जर्चस पाता पता है चाना आप वाइटमिन सी को अति दी सिवक्तों ने बेरिन वाइटमिन सी वाइटमिन ई अति जरा सप्लीमेंट के तौर पे हम ले सकते हैं अति घर पर लोत नायरा पे नेता अमर गोश्यमित और बिल्कुल ही नेचुरल है उसमें कोई आप एडिटिव्स यानी एड मचाया चाना डेफिनेटली कि ये आपकी हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट हो सकते हैं अच्छा दो ना तंगाती यूजेस का तो जर नगा तो चिकपा ना आती थी सी बक्तौन खराज नगा तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आदि बहुत सारे लोगों को होते हैं हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं या ना जर नगा तो आज की मॉडल मॉडर्न यानी मेडिसिन रिसर्च है उन्होंने सीन कि सी बक्तौन सम से इंपॉर्टेंट गाती कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है ना सोचो बहुत सारे आती स्नी बीमारियों जैन हाँ चाहे एडल्ट हो चाहे इन्फेंट्स होते हैं चाहे अति बुजुर्ग हो सका दी प्लांट पर लेने का तो कहीं ना कहीं गता कार्डियोवैस्कुलर दी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं गता सपोर्ट है जिनमें कि दी जो डिजीज गता म्यो चेस या हजू यहाँ जैसे कि इम्यून सिस्टम बूस्ट बचिन को आम तो संगति सोसाइटी में मियों के चाहे सुनसे इन शिमिन दक्षिण सुनसे जरा हाँ क्योंकि बिल्कुल जंक फूड जो से सोचो इम्यूनिटी छोटी होती सोचो तो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए आता दी प्लांट मन जरूरी है और 10 to 15 times मोर है उसका जहाँ जैसे देखिए विटामिन सी इसमें होते हैं यहाँ जी जिंगा थी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल देन हेल्थ में ना थी तो आजर में होता स्टमक पेन चेन दी में ना कहीं ना कहीं दी प्लांट पे एक्सट्रैक्शन चाहे ना थी बेरी लेन कोई लीव्स लेन सो भाई लेन ना तो काफी हद तक दोनों यहाँ जी जिंगा ना थी ब्रेन हेल्थ आपको जो ब्रेन हेल्थ है फोकस नहीं होते हैं सोचो बच्चे का मेमोरी गाते जब कि थ्रू स्कूल यहाँ फोकस है स्टडी के फोकस है खूब मनजान समेत अच्छा खूब बिल्कुल ही कहीं ना कहीं खूब मोबाइल के दुगे छाना है फोकस मेमोरी सोचो अच्छा मेमोरी रिटेंशन दिन गाँव में कहीं ना कहीं जो ये रिसर्च है उनकी सी वक्तों का तो तो ब्रेन हेल्थ मीन सामसे को इंपॉर्टेंट नजर सोच दे मीना दस होगा आए गति मिगी मिग थोच गति दक्षा छिमी छिंची कोल कोल का मिगी गति विजन छोटे इंचे था जो अच्छा कोल कोल का मिगी थोंग में जित कहीं ना कहीं दिन वाइटमिन ए कंटेंट मान ज्यादा सिवक थोना ना चाहना कहीं ना कहीं वाइटमिन ए किस के लिए इंपॉर्टेंट है गता आप बता कि मिगी मीना मान जरूरी है सोच जैसे कि गति गाजर है वाइटमिन ए का दियोत ना का तो दिन सोच ला दिन माना ए वाइटमिन ए यानी दी कंटेंट माना ज्यादा है उन सोच यहाँ प्लांट चिंगा जरा लेंथ क्योंकि अता टाइम ज्यादा में था जो अच्छा देन गति डंडेलियन जर जो खोरमा जर नगा तो खोरमे यारा चिकपन को शुगर मीना डेफिनेटली खोर गया सोचो सो शुगर गति क्योंकि लाइफ स्टाइल डिजीज सो दसंग आता है शुगर देना माना चिक चिक माना आम गति मीमा सा शुगर मीना माना गया सोचो कहीं ना कहीं शुगर को कंट्रोल करते हैं बीपी कंट्रोल बचे खोस अच्छा देखने दी प्लांट पे रूट पोते रूट पोगा तो लेन नगा तो खोस लिवर नहीं डिटॉक्सिफिकेशन बची सोचो क्योंकि इसमें एक यानी केमिकल होती है इन्यूलिन सोचो तो खोज बाइल प्रोडक्शन बाइल प्रोडक्शन माना ज्यादा बचू

0: लीवर ला, जितना ज्यादा बाइल का प्रोडक्शन होगा यानी आई मीन एफिशिएंटली और लीवर इसका तरह से खत्म बनेगा, तो लीवर का एक मेन काम जो है वो है आपका बाइल का प्रोडक्शन है.
1: बिल्कुल
0: और बाइल सम जिबिंग में सब पोंग आती फैट्स और फैट से इमल्सिफिकेशन छचिन यानी फैट्स को तोड़ने के लिए मेन जो चीज हुआ आपका लीवर का बाइल है. तो बाइल गति बहुत सारे दर्शन आता प्रॉब्लम है कि लीवर एंड प्रॉब्लम सोसो फैट्स ज्यादा जमा सोसो जी हाँ जो अच्छा लीवर काफी टॉक्सिक केमिकल्स की वजह का या बहुत सारी चीजें वजह का आती लीवर से बस लास्ट बाबिनु कि यानी बाइल प्रोडक्शन ज्यादा छमे जत दी प्लांट रूट बुगत लेन नगर तो बाइल प्रोडक्शन ज्यादा छ सोजो और लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में मान ज्यादा इंपॉर्टेंट इन और कहीं ना कहीं खोज जरा नगर तो अति दक्षण लिपिड प्रोफाइल का तो आदेशता नगर तो आम यू चीयर लिपिड प्रोफाइल बस क्यों कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल होने अच्छा फैट्स काफी सो सोन जन दी प्लांट प्लेन लगा तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को भी कंट्रोल डेफिनेटली कर सकते हैं. यहाँ जैसे कहते बीपी रेगुलेशन ही मीन जैसे बीपी मीना मान और गलत दो ना सी पकथोन सर यदि रेनिलियन गति यानी खोरमा जिंदे गति इसका दिखा सो जो यहाँ ये केस सीजन अति अच्छी यूल को अनुक एक पेशेंट जो है इंसुलिन दर्शक इंजेक्शन तंगने ओदे कहीं कोविड टाइम में खुद थुक कहीं ना कहीं रिसर्च मेडिसिनल प्लांट्स का स्पेशली से वक्त होने के बाद तो देख अनंगा मेडिसिनल प्लांट्स का एक्सप्लोर बच्चा बाकी दोनों कहता था मेरा एक हॉबी भी था तो दे अनंगा चिक चीतों की हाँ पेपर्स मैंने जब मैंने खोल के देखा बहुत सारे पेपर्स को जब मैंने चेक किया है तो उसमें एक चीज निकल गया कि सिवक्तों समझ में ना इंपॉर्टेंट गती शुगर ही मीना जरा चाहे नंगा को रिकमेंड बस पे कि ये दून लेन ना का तो बेटर हो सकता है शायद खोज लेंस पा बहुत अच्छा रिजल्ट आया. फिर इसके बाद कोविड टाइम में जो ही समर में गति मार्च अप्रैल के शुरू से डंडेलियो नहीं होगा पूरा को बोरा भर भर की वो खरमा तुच्छा और गुरी मीना जक्षा स्टॉक काफी कंट्रोल हो गया क्या नहीं उस प्लांट जिचिंग आती जरा खबरा खबरा खबरा आती करगिल रे एरिया नु जाते थोपे नु गया लेकिन जो आती बटालिक सेक्टर से थोपचिन और मैक्सिमम जी कोई ऑप्शन लिया ले गता ले में अच्छा से नगा तो ले ला में अनु गति बोल खर भी कना ओदि कना दुल लसों से न सोचो खलसी साइड ला मन रोड के ने थमा कुरी का दरी ने अनु बिल्कुल ये प्लांट चोंचिन बिल्कुल जुगा को खेते सों सों सोचो एक क्रीपर की तरह है वो तो उसके फ्लावर जो व्हाइट होते हैं पिंकिश चौचिन ओदे प्लांट पो मन दी शुगर में मन बढ़िया और कुछ टेस्ट कर पोगत ताना का तो टेस्ट काफी खंटे हो जैसे ना जन खबरा अति और एक पाम चीज सिस्टम मेडिसिन यानो काफी यूज छिन और हम चीज इस प्लांट को लेते भी हैं और इसे कहने कहीं चीजें बनाते हैं दवाई चाहे दी प्लांट का आता जन का तो उस प्लांट का भी मैंने कुछ चीजें सैंपल लेके आया फिर उसके बाद पेशेंट लेता हूँ उस पर हालांकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ सच मेडिसिन गती दी नहीं सोर एक पजरे लेकिन कहीं ना कहीं मेरा बैकग्राउंड जो बॉटनी से है प्लांट से है और स्पेशल में एक रिसर्च रहा तो कहीं ना कहीं प्लस छा काफी हद तक कंट्रोल छे कुछ चीज समझती स्पेशली गति डायबिटीज जो एक जो ड्रेडफुल डिजीज है छा दी प्लांट गति दुख पाया छा आता प्लांट उनका तो लेन न आती लोकल डाइट यहाँ क्योंकि देखो होता क्या है कि गा जगह छो मीमांस जो ना तो क्लाइमेट इतना का तो देश अभी अडेप्टेशन ऐसा भी का नेचर संग उधर स्वान फिंसिन लेकिन गति बाजार ना मंडी लखन सब्जी जो कि कहीं ना केमिकल यौचे बहुत सारे फर्टिलाइजर से कहाँ से यौचे सोचो छना कहीं ना कहीं सुनोते चीज सुनो बिंगान पे आता बिल्कुल फोकस में स्पेशली रीन है बिंगान की जिसमें बिल्कुल केमिकल नहीं है नेचर खुद खोरे जो से जो चंदी चीज फोकस छा तो आप अपने हेल्थ को अच्छा कर सकते हो राइट स्टार्टअप खोल सकते हैं आप यहाँ स्पेर यहाँ दिखा मौका लेना की सिबक्थोन का दक्षण गति लद्दाख होने कम से कम 20 से 30 एंटरप्रेन्योर्स सोचो और ले में तो कम से कम 20 से 25 तक है कारगिल में एक दो है सोचो इसमें लॉजिक है चाहे दे अनुखोज एक एस्टिमेशन के हिसाब से कहते हैं कि मोर देन 200 करोड़ सोचो एक सीजन में आप सिबक्थोन से जनरेट कर सकते क्यों नहीं चाहना प्लांट चिकची का लगाता हूँ करोड़ में जब आप फायदा ले सकते हो
1: बिल्कुल
0: सोचो चाहना यूज को आने की जरूरत है और
1: बिल्कुल जो मन तन तन मूल से दक्षा मेरे सिबक थोने मांग पोफिंग मन आता थुम अच्छा जो लमी था मसाई का छुके दिन समझ दे तो मन ना फांस जाऊं धालन की दिन आते स्टार्टअप चिक गोजुक बना चाहे मुझे दिया फंतोसिन में पेंसर जो चना जो यंता ता स्कॉलर सुन यंते दिया रिसर्च बस में ता तक्स पो दिने चाहे मुझे फंतोस जो जरे चना दिने का यंते चाहे फर्दर गाती पॉलिसी मेकर उन्हें बो चाहे तो इनिशिएटिव मनन से कि दिका लेस बागोशेस दुख जरे गाता तो स्टार्टअप यूथ सगफिला दक्षा मंत्रप्रनोर
0: रिसर्च पॉलिसी मेकिंग एस एन टी पॉलिसी मेकिंग उनसे इन लद्दाख से रे छा दिया की लद्दाख अब मेडिसिनल प्लांट्स को लेकर स्पेशली सिबक्थोन को लेके पॉलिसीज अभी बन रहे हालांकि प्रॉपर कोई पॉलिसी अभी बना नहीं है ये अभी पॉलिसी जो है दक्षिण एजेंडा सेटिंग ही स्कोर पे दिया.

0: पॉलिसी साइकिल में आप जाते हो तो सबसे फर्स्ट स्टेज आपका एजेंडा सेटिंग होता है, हस्ताक्षर की दी प्लान रिगार्डिंग सम इंपॉर्टेंस डुक्स रहे चाहे नक्सा आती यूटी एडमिनिस्ट्रेशन खोरा या बाकी स्कॉलर्स का अच्छा रिसर्च हाउसेस हैं या दे मैन मंगाती एलएचडीसी खोरा कौन सा दी इंपॉर्टेंस पर छूट रही अपना बहुत सारे मीटिंग्स उन्होंने करी। तो जो तुम
1: कसा
0: मेरे जो पीएचडी के 5 to 6 years में मैंने देखा कि लद्दाख खुनिया ने दख्सा सिबक्थोन के आते पॉलिसी लदन इंजीनियर सोचो
1: कसा
0: और सिबक्थोन खोरंग आती वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर क्यों से ओडीओपी स्कीम में अंदर
1: कसा
0: कि ओदे ओडीओपी स्कीम में अंदर गाता सिबक्थोन ला प्रमोट बचा जैसे होगा कारगिल खुनिया ने सपोज फॉर एग्जाम्पल गाता एप्रिकॉट यानी प्रमोट बने वन
1: कसा
0: डिस्ट्रिक्ट हिसाब
1: कसा
0: क्या जैसे होगा छा ना गवर्नमेंट इज काफी हद तक पहने दान इंडस्ट्रीज जो आपका डिपार्टमेंट है वो आपको बहुत सारे स्कीम्स में आपको पैसा देते हैं स्टार्टअप्स। मैंने देखा ले खुरियानो काफी हद तक यंगर जनरेशन फ्रूट सकस जो पढ़े लिखे हैं वो आते हैं स्कीम्स से फायदा उठाते हैं अपना स्टार्टअप खोलते हैं दोनों कौन पहने चुन पाया छना गवर्नमेंट कहीं ना कहीं दी चीज पे कला संभिन गया सोचो सेंटर ऑफ एक्सलेंस दक्षल ले बेसिन अति सिवक्तान क्या जैसे वो सेंटर ऑफ एक्सलेंस गति दीरा बेचेसिन
1: कसा
0: एप्रिकॉट का चाहे दो न्यानों को लास्ट बखाना घोष दे दो न्यानों
1: बिल्कुल
0: का रिसर्च बखाना घोष दो न्यानों का एंटरप्रेन्योर घोष सोचो अच्छा अच्छा ना कहीं ना कहीं आप अपने इनकम को भी स्टेबल कर सकते हो गाता आप मैं कमी दे रहा हूँ लोन चीफिंग से सोचो या ना बूटी हटिक या मैं नगाता हूँ आती अच्छा
1: गारमेंट की
0: रेस्टोरेंट
1: हटी
0: चीफ सोचो
1: कसा
0: या मैंने गारमेंट से जो कि आम हो चुके हैं
1: कसा
0: राइट दो चीज से निका फोकस वो शिफ्ट सोच कहीं ना कहीं मेडिसिनल प्लांट दीदी सेक्टर पर यूँ ना तो थोड़ी बहुत पेन डेफिनेटली हो सकता है क्योंकि मेडिसिनल प्लांट है उसको आपको जांचने में सोचो खोलता अच्छे चम से
1: ना
0: कोई कन्फर्म किया जिन ट्रायल बेसिस पे आपको चीजें करनी है हो सकता है टाइम लग सकता है लेकिन आगे आने वाले टाइम में आप एक बहुत बचा अपना अच्छा सेटअप खोल सकते हो इकोनॉमिकली आप बूस्टअप भी हो सकते हो बहुत सारे लोगों का गाते नौकरियां तंग माया चीन हजो इस सेक्टर पर काफी हद तक स्कोप है उनमें बख्शीजो
1: जो अच्छा ना जो दक्षिण आते सालाश पे जो नाती खिमचे से डिस्ट्रिक्ट खुरियंग जो ना ले आ थोंग माह जो नाती टूरिस्ट आ कल्ते खून टूरिस्ट सदस्य क्यों थे ना कौन सा ची अन्यन फ्रालुक्स बंद की नाती लद्दाख खुरी स्पेशल जिक्ची हो जखन जहाँ जो या कौन दिन नची थोंग शे खुरे छोक सम ना नाती लद्दाखी मेडिसिनल प्लांट जीन या हर्बल अजुक्शी टी सगे टी बेग सकते सोन दहा जी दस वसी वक्त होने इन्ना छना नाता दना इकोनॉमी अजुक पे अनुसार ना तो टूरिज्म मंगता अट्रैक्ट बाय एंचे से मना
0: बिल्कुल
1: दनी अजूबेगा
0: बिल्कुल जो एरस माना दियो ग्यालास पैरा दी गाता दियो टच बजिया कि दक्षन गातेस आम गाती रेस्टोरेंट खोरांग जरिया
1: कैसा
0: कारगिल में आई थिंक मुझे नहीं लगता कि गाता कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है कि जिसमें कहीं ना कहीं आप मेडिसिनल प्लांट्स की कुछ चीज़ों को लेके हैं चाय टी की फॉर्म में सोचो चाय या किसी बेवरेज की फॉर्म में आप देते हो मैद दे मैंने मैद
1: मत मत
0: सोचो और
1: मुश्किल
0: उसको खोलने में भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि देखो आप रैंडमली मेडिसिन प्लांट्स को ऐसे में प्लगआउट करके लाओगे देखो ना रेन खोचा और सीधे आप कमर्शियली इसको चीज़ें नहीं कर सकते वो तो
1: ना
0: है
1: ना
0: डेफिनेटली है
1: बिल्कुल
0: लेकिन गवर्नमेंट ऐसा भी नहीं कि आपको बिल्कुल रोक रहे गवर्नमेंट जरा सपोर्ट बचें सोचो
1: कैसा
0: तो मेडिसिनल प्लांट्स क्यों से कहीं ना कहीं दो न्यूज बसे गाते जी का सिंपल सा गाते कैफेटेरिया चानुक सपोज गाते चाय दुकान छोत या सपोज गाते सकावत हुआ था तो सिबकथो ने टीज इंजीनियर गाती फ्रू चीज चोस
1: कैसा
0: तो हम उसके घर में जाते हैं तो अचान फ्रेंड्स का छान से जब भी वो जाते हैं तो गाते समर सीजन है उनको सी तुम्बुर उगी
1: कैसा
0: थाइमस जिसको बोलते हैं
1: कैसा
0: थाइम टीज रहे मान खातन का काफी फेमस है चना उसको थाइम टीज रहे या सपोज गतिर दिया प्लांट चौंचिन वर्बेस्कन थैप्सिस इंचिक
1: कैसा
0: उसकी भी गाते जैसे लीव्स क्यों से कुछ टी की फॉर्म में या बाकी इस चीज में लेते हैं लोग या लेकिन गाती करगिल खुरिया गाता बांग यंचे तो लेकिन इनिशिएटिव अभी तक हुआ नहीं है चाहे बाकी बाहर ना टूरिस्ट एरिया इसकी यूं से ना कारगिल में देखते हैं कि कौन सा यहाँ का लोकल है जो कि प्योर है बाहर पर यूं से नदी आनो गाती या चीज सुन चल देखो सी भक्तों ने जूस उनको रिशे नदी का ना
1: आना आना
0: सोचो खाली उनको सी भक्तों का एक जूस मिलता और तो कुछ गाता है यहाँ ज्यादा गाती लगा बाकी प्लांट्स को तो हमने टच किया नहीं है
1: कैसा
0: चाहे आप टूरिस्ट को अट्रैक्ट भी कर सकते हो आप अपनी इकोनॉमी को बना भी सकते हो सोचो आप लोकल यहाँ का एक प्रिंट बना सकते हो एक इम्प्रिंट जाएगा हाँ इम्प्रेशन
1: कैसा
0: जाएगा कि हाँ लद्दाख में सपोज ये चीज़ें मिलती हैं चाहे दी चीज़ उनके लास्ट में जरूरी दुख पाया दियानो मेन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट एलएचडीसी सोचो और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने मुलाकात बसे एंटरप्रेनर्स को यंग जो जनरेशन है खुआ सपोर्ट बसे गार्ड चुक से स्कीम्स यंग बदना का तो ngati phun la younger generation la diu chi suni kanga thago ta umar shu us yang spare chi ki jo scholars hain ya suppose medicine plant ke regarding jo bhi kaam kar rahe hain kaun se kahin na kahin awareness phailai ba ma zaruri to har jagah
1: कैसा
0: anson se
1: अनन
0: sojo to suppose मुझे मैं इंडिविजुअल अपनी बात करता हूं तो मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग हैं जिसमें से ngati फयाज होते पश्चिम तो मेडिसिन प्लांट्स के ऊपर काफी वो काम करते हैं चन
1: कैसा
0: खोसा हगोता से ngati मिल ला छुट छुपी यूज भी कोशिश बस से दक्षण काफी हद तक लोग जो हैं ngati मेडिसिन प्लांट्स का यूज भी नुक लेकिन अभी तक कोई पर्टिकुलर प्रॉपर रेस्टोरेंट कि जहाँ पे ये चीज़ें

0: सर्व होती है, ऐसा मैंने देखा नहीं, होपफुली फ्यूचर में हो ऐसा।
1: انشاءالله ده ده نار ديال مجرد تانا يامبو يامبو ديال باي انتز دو باج جو دارسن متا ما تخص باز لما انا يوليو لا سيلف هيلب جروبس دو تشوس وما تا حاجو تانا كوز باقي برودكتس هاي كانت لاز بنو اندو باي ناتي لاتشس لو ان نايا ناتي كلتشر نا تراديشن نمبو تو تيوت كاني چلا غوني كا دانا تخص لا كلتز ناتي اگریکلچر ڈپارٹمنٹ ان یاگا لونگ پو حاجو دو نمبو تو تيوت ان میڈیسنل پلان نمبو کوز کو ٹریننگ ری تان سیگا چو تو سیکھون چس انچی بس دین سنا تا حاجو پروسس بچس ان جنا گا تو سیلف ہیلپ ग्रुप साइकिल नगाता गोज बैंसिस
0: में मां दुर्गालम जंगली जब 2017-18 में मेरा ज सर्वे था एक आई मीन फील्ड वर्क था देस न ले आ जगह खचे सु बाद ध्यान नाते कोऑपरेटिव सोसाइटी दुख ले
1: कैसा
0: ओदान मैक्सिमम बमु दुख
1: कैसा
0: बमु सेल्फ हेल्प ग्रुप दुख सुन लो खोस हार्वेस्टिंग बस क्यों नो खुआ पहने तो अनु सोचो
1: कैसा
0: देन अंगास वुमेन एम्पावरमेंट रिगार्डिंग नी थीसिस बुक ने चैप्टर चिक चेत में देन अंगास मेंशन वस में कि ची बसे लद्दाख अनु स्पेशली ले कुरिया अनु आम बिल्कुल जो पढ़ा लिखा नहीं है और जिनके घर में प्रॉब्लम्स हैं ओदो ने ची बस खुंती इकोनॉमी ओदे कने छुए नजर चाना ओदे अनु अति बुमुन ला ओदे कोऑपरेटिव सोसाइटी अनु कोस लज बेन दे अनु खा आर्टिस्ट बगे चाम से इनकम एंता हम मजर नगा तो हालांकि से वक्तों ने सीजन पुसर वर्ष 25-30 दिन का है अगस्त एंडिंग सितंबर तक बिगाते स्म टूर गुशिन मैंने कहा तो वेरी छोचिन कोस विद इन 2 डेज में कम से कम 30-40,000 रुपया रेडेस 2017 अनु कौन सा कमाई बेनुस चाहे एक सिंगल एक इंडिविजुअल चाहे आज के टाइम में जम से गाता आगे सोच दुख दुख चाहे ले अनु काफी हद तक चीजें दुख पाया चाहे गाता रीजनल डिस्पैरिटी मन हम दुख कारगिल बने आता ना गाता देख ना गाता कारगिल उस पर वाखा एंटरप्रेन्योरशिप समझो हालांकि वो गवर्नमेंट प्रोफेशन में है लेकिन खोज कुरी इंटरेस्ट जैसा भी खोज छोटा मोटा एक सेटअप बनाया हुआ था खोज कुरी एक्सपीरियंस हाउसेस कारगिल में मैंने ये चीजें करी थी लेकिन हुआ नहीं क्योंकि कारगिल अनुगति थी अनुबास पा बमो सा कुछ इनकम जनरेट बस तांस पिन लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से को बेचारा क्लोज सोच रुक गया चाहे कहीं ना कहीं को सपोर्ट महसूस होते थे ना चाहे अनुगति थी अनु वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पा का तो ता ना तो खुआ दीचे सुन हागोता से खुआ ना सपोर्ट का तो बना का गवर्नमेंट स्पेशली कोऑपरेटिव सोसाइटी या बाकी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या स्पेशली एलएचडीसी को फोकस बस खुआ मीना वुमेन्स हेल्प ग्रुप इन मेडिसिनल प्लान जरे दिया नो कप्तान का तो फिर बहुत अच्छा हो सकता है इनकम आ जाचिन अति जन विनान और गलर गलर चीज सुना ले मैंने जो तो कहीं ना कहीं दिन चार होशे दुख पाया इंशाल्लाह इसमें कहीं ना कहीं अति गवर्नमेंट फोकस बसे स्पेशली अति एल डिसीज बार होशी मैं क्योंकि देखो आम यहाँ की जो चीजें हैं वो आपको पता है ना और आपको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आप भी लोगों के इश्यूज को लेके आ सकते हो और आप पॉलिसीज बना सकते हो समझो चांद लखतुत बस बना करते हैं जय दुख पाया
1: बख्शिश जो है इसमें तंतन मूल छाना गति एल एच डी सी दिया नुकल तेस दुल्ला उसे गोम्बा लिन ना का तो मियां चशी मिंदु खर्चो दोनों यंबो हम आती में माँ सुनिसन सपोर्ट बागोस कि कौन इस कल्टेस दस और शीन चालन गति दिया मैं जगत यों चे संदितु सुने अनुगति शर्बन अच्छी उन्हें फ्लैफेस संकों दस और गैलस कप्स जितानो देरी लूंग पे अनुक नान स्ट्रोली का खून रहा है गोम्बे का क्रांश अच्छो गति पूरा कारगिल या लद्दाख से पूरा इंडिया फ्लांगता दियो हजु सिबक थोंजरे या एप्रिकोट उनजरे गति फ्लली के नरगला जुक्षोतं दिस ट्रोली का तामिन छे स्कप्स थोबे तं छने जु दक्षम गतां दिका यांग लोकसं अत हजु होम्योपैथी नेशनल नाता दिस पर रिकॉर्ड पिन एलोपैथी जरे दक्षम गरा स्पेरात स्पेरात अंच इतोस भाजु गति आता पसा जर न छपाल सनल नाता मनस्तो हजर मेन न मने यांग एरदर छमिगोस लतिन मन गति जम बस दसमन छका तो مخشان نادا تو در صدی مامی گذاشت باشه ماتی رینی اتو بذاری پس سعاتی دی چه سلاسا پیو پس آما مامی تو بذاری جست نتشن یعنی اسمان سو خاچی از من تقصن مول نگات و گانی سعی کرد لعاتی پروگرام یعنی کن فرستان سعیت پانی خون اس نایا یوم من خون یا ایتی گان سی خون جان دن سکالک به فرلوکشی بود
0: مخشی چیکی یاریز مخشان زدی مخشان یارا آم عاتی پلین ایریان ثبچه منیا چون مخشان عاتی نه کار کلا یا سعیت اینا ثبچه من مخشان عاتس که یعنی ساینتیفیکلی که کوردالیز درشین سوچو کوردالیز که بہت سارے करगिल करगिल और ब्रह्मोशिमिक जिन यानी यहाँ से मतलब काफी हाई टिका कि जहाँ पे जाना बहुत ही पॉसिबल मतलब मिनुक पाया लेकिन मक्षांगन आप पेन लेके जाओ जाओगे थोड़ा सा अति स्पेशली यूथ सका सोचो खोर बजा सा तो रिय सो से ओदी चीज सुन कलेक्ट बस क्यों ना तो
1: ये पूरा हाइकिंग में
0: छा दे सोचो चाहे रुगुनी मीन आता पूरा स्टॉक लुशियन सोचो क्योंकि आमतौर से होता क्या हाइकिंग आती अर्गुन ला प्रॉब्लम छे अर्गुन ला जन्म छे क्योंकि अति हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से और यहाँ जैसे कि अति तो अति प्रॉब्लम पर हम होंगे तो जन्म छे क्योंकि जंक फूड की वजह से होती है दे मीना ते मीना आता उस पर चिक चिक दिखा रहा डाली जरे मक्षम मान रही आला चुन गया चाहे चीज को आप ले सकते हो यंग प्लान चिक चिक आता उसने कहा तो अच्छा आते जिसकी
1: तुम्बुरुक
0: तुम्बुरुक ने जाएगा थाइमस जिस दे
1: कैसा
0: थाइम टीज़ रहे थाइमस जरे तुम्बुरुक यंग

0: माती प्लेन एरिया हम जमीन को री रे अच्छा और शिने लेकिन इतनी
1: कैसा
0: हाइट पे नहीं होती जहां पे आपकी कोरडेलिस गति मक्षा तुम्बुर की यारा को एक क्रीपर प्लांट है सोचो
1: कैसा
0: काफी हद तक मान जिम्बुटी हो चाहे सोचो और थुपे दाम दे आते
1: कैसा
0: सोचो कतो को तो टी खोना क्यों सोचो का तो सोचो हर्बल टी जरा आते उसमें से थाइम टी बहुत
1: अच्छा
0: भी
1: मन मसाले फिलहाल यूज में
0: मसाले भी नहीं
1: जैसे
0: यूज बचास
1: इंग्रेडिएंट
0: बिल्कुल सोचो चना आती तुम्बुर चीज सो तस पर चीज जगाता हूं कि मेडिसिनल प्लांट जरा लगाता हूं अपने फेशियस बाशियस परोशन सोचो
1: कैसा
0: बहुत
1: उन्हें
0: सारे प्लांट्स हैं कि लद्दाख कोरियन की जो कि काफी टॉक्सिक है
1: कैसा
0: सोचो का दिल दिल स्वागत है ना तो या ना कहीं यारी नर्व्स का
1: ओ
0: यानी
1: थन में बदल लख नॉट
0: मेंटल
1: प्रियाज
0: प्रॉब्लम
1: सेसेस
0: छिन सोचो कहीं ना
1: कैसा
0: कहीं हेलुसिनेशन हो जाती है देन इस पर चिंगाते लंडा लंडांग से
1: कैसा
0: तो लंटांग आती साइंटिफिक नेम को फाइसोक्लिना प्रियल्टा सोचो तो
1: कैसा
0: लंटांग को तो प्लांट चीन जो कि मेडिसिनल यारा जन खुद खुद नंगो द केमिकल तो सोच रही की काफी हद तक दसुआ रोल है ना तो गाता टॉक्सिक सचा
1: कैसा
0: ओदा ने चिकची सेशन को जैसे कि यार हेलुसिनेशन इन द सेंस
1: ओना
0: की
1: ओना
0: यार आ का चिक चिक खोर बथोंचा
1: कैसा
0: फुर बथोंचा
1: ओना ओना
0: सोचो कसम कसम नहीं रखना लहसुन बचा सोचो यार गोहन घोर बस सोचा चा आप अपने होश में नहीं रहते हैं सच
1: कैसा
0: जनदीप प्लांट माना और ज्यादा का तो कंसंट्रेशन का तो लेना का तो कर कर कर आपका डेथ भी डेफिनेटली हो सकते हैं चाहे
1: कैसा
0: तक आती आता बहुत सारे केसेस जो सुन की लदा खानों बाहर पाने स्वजो से छोट सुजरे क्योंकि आम गाता
1: कैसा
0: आती में पता उत्पन्न समय में
1: ओना ओना
0: लेकिन दस यंगर जनरेशन लदो निकल जाती प्रतीक्षा में लोग
1: कैसा
0: ओदे नजर देंगे लंडा दूसरे की अपना खुदा न खास्ता आता आम जो शहन का तो किसी को प्रॉब्लम दे मीन एंटीडोट दुख नेचर
1: कैसा
0: कोर्स एंटीडोट जो स्थान से होता है उदिन गति डंडेलियन खोरमा जज दे
1: कैसा
0: खोरमी लीव से न खोरमी रूट का तो जन का तो उदी डंडेलियन दे लंटांग पोस उजर गया अपना उदे डंडेलियन पोस उदे खोरमा खुए उदे टॉक्सिक इफेक्ट पे बिल्कुल एकदम खत्म बस से
1: कैसा
0: यार यहां नॉर्मल सजेशन चिकपा दो दोनों खबरा मदरसा
1: कैसा
0: खबरा जिसको हम कैपारिस स्पाइनोसा कहते हैं डायबिटीज के लिए काफी अच्छा है कंट्रोल भी मीना दोनों गति डेंडिलियन खोरमा जिसको हम साइंटिफिकली टेरगिजकम कहते हैं
1: कैसा
0: ओदे प्लांट इसका आती एज एन एंटीडोट गति लेन मेंशन सो जो लंटाई
1: कैसा जैसे
0: सोजो
1: अपना
0: यंग प्लांट जी एरेस बना अति अंगुल अकपाजन चोंच
1: कैसा
0: सलाम पंजा कहते हैं इसके रूट को अगर आप देखोगे अच्छा स्पॉट नेम राइजोम दर्शिना सोचो
1: कैसा
0: टेक्निकली रूट और राइजोम में डिफरेंसेस आप उस पे नहीं जाते हैं कोई तो रूट बनता ना कोई तो पंजा जो जिनको
1: कैसा
0: सोचो पांच इस केस में ऑफ शूट निकले होते हैं जो राइजोम में कोई राइजोम पोखरा दो ना कोई लीफ सुन दो ना कोई फ्लावर्स उनका लेन लगा तो बहुत सारे लोगों को जैसे कि अर्गोख्युत में से था
1: कैसा
0: एज ए पॉटन यूज करते हैं क्या खोज ना तेज गोला ताकत ताचे एनर्जी ताचे सोचो यहाँ से जो कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस दे में नड़ गया इनको अंगुल अक पे का तो मार्केट का वैल्यू था ना तो के जी आई थिंक 15,000 ने उसका अंगुल अक पा
1: कैसा
0: कोई फ्लावर पर पिंक कलर है आम गति मना प्लेन एरिया सानु दी प्लांट पो थोप चेस इनका सरक्षी
1: कैसा दरे सुपे एंटीस टिस्वेंग इन चेतपिन डॉक्टर मोहम्मद अली का ना दना टिसो नंबो आकाशवाणी कारगिल का ना फ्रचु पर भी प्रोग्राम सगेत पानी फिया था माथोन इंशाल्लाह यों में प्रोग्राम या यंता नंबो थुकचेस दना दंगमा नंबो यंता साई का ना इजन लनेत यजु खुदा नश्तखमानी फखरें अस्सलाम वालेकुम। Dari sakpayantes program yaninut pin saget panupya medium vivika ngache sa akashwani kargili kana zirinut. Waxpo tusut urdun sonsu kasata program yan mazat yans par senu program prachukhan point Muhammad Sharif program producer Gulzar Hussein.
2: Assalamu alaikum dering jakpo chandral
3: shami baja urdun hans parsoni program nangam bo mahamad sharin salam po program na bakan kuni dunuk promotion sonshi ko yan khan kun dering hi hans parsoni program yang yang ati fespa mehman bakir ali sports lecturer government hospital sar secondary school kargil acha jawab as kyon kyon so chana dini di tiso program panu ngates sabe kana de tiso bacha ki bomo bo sasares ngati hans parsoni anuk samsig खाक लेन न्यूट या चाम से खाक लेन मर्गोशाइन यों में वासन अनुक देश को ला फेसबुक वासे कुरी कना चा कोरंग स्पोर्ट्स लेक्चरर इन मना कोई कना दी टिशो गतेस बसे स्पेरे खची गया ता खासन स्पेरे खची खप चुपी फ्रालुक्स बचा गोमा टिशो यारा गा दयानाव फर्स्ट न्यूज को ला की दी यंग स्पर्स चिनो गति बोम बुसान ला खासकर स्कूल या सिलखन बोम बुसायोत नंग या स्कूल ने बी से कॉलेज ले ना या यूनिवर्सिटी ना कतो चामचिक खचन दुगजु दरे दी नामजे अनुक यंग स्पर्स चिनो कासा
4: शुक्रिया शरीफ साहब सावास न लयन ता शुक्रिया दावत की एंटिस एंटिस जोड़िया नु ना बुलाई बसे कौन से दावत ता कौन से स्पोर्ट्स के बारे अनु को जरूरत भी मौका ता और बुमोन ला दी यहां पर से नो तम से जरूरी इन जरसस पे बारे अनु के जरूरत भी मौका ता दे फ्लायर शुक्रिया जरे दी यहां पर से नो चाहे बुमोइन या बुसाइन गतंगा में भी ला जरूरी क्योंकि दरे गता थों से नती

0: pinchi zirba
1: xie
0: nyan.
1: rwa nyan chin, odo importance vare chichi gen ju, doos base nga ta nga dare female coach nga tila, female is, even ki nga tila male coach korang med dare nga tila gilo kato, kana coach nyiz mene nga tila ayot med yara, so ayana is qualified coach nyiz mene med. Chana nga ta nga coach mana bilkul nga tila gilo mana deficiency mana zabarta juz, coach mana zarud, nya nga female coach dana sapa ma med. Chana men chichi odo gen ju, female coach zarudin, female coach kato, yod nare bumo ni participation pu or zyada chachin. Yang sware chichi, dona bumo saga sexual harassment chenu ju. करगिल से बाहर सेक्सुअल हैरेसमेंट छेनु दे सेक्सुअल हैरेसमेंट या छुपो रीजन छे चीन गॉस बसे बोमो ने पार्टिसिपेशन पु कम सोसेन रिसेंटली आता आथों कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट पु ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ सम से रेसलर गामा जंतर मंतरे का दुख से खून पूरा प्रोटेस्ट बस क्योंकि खून है मो सेक्सुअल हैरेसमेंट सो या खूंगा ओ सो हैरेस बस इन चुक छना दो मेन रीजन छे चीन की अगर का तो खून ट्रेनिंग सेंटर पर नू या केम तांसना उदू तो ला हैरेसमेंट का तो छान डायरेक्ट बोमोनी पार्टिसिपेशन पु कम चारगोशिन
0: बे मासे का जो ट्रेनर नगर का तो
1: फीमेल का तो
0: पिनने का तो दुनमन खत्म चार
1: खत्म चारगोज होना बिल्कुल मैंने खत्म चारगोज मैं सो जो छाना दोइस का मैंने मेन रीजन इन जो चिक पु ने सेक्सुअल हैरेसमेंट ज्यादा सो सेंस जो या सेक्सुअल एब्यूज सो सेंस नंबर सेकंड लेग ऑफ फीमेल कोच फीमेल कोच एक ट्रेनड वेल एक्सपीरियंसड वेल क्वालिफाइड कोच मैंने मैच तो बस जो छुपो हैंड्रेंस सेंस की गॉस बस फीमेल या वुमेन participation pu support sianu kam so sen su jukasa
0: mona dianu ngata ngati sape ka ngate se ngati da social den na ngate zebe ta ju bu sa bomo da dianu bu sa kosh ka to na bomo den nan ka to na ka to a bomo e sap chi bu sa u mana milke ko kosh din nan ka to hu na gul milke ko coaching ba man mani gep chiz da ju a bu sa na bu se coaching man ka to na wo ਪਰਮ ਬੁਸਾਇਨ ਮਨ ਗੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨ ਕੋ ਨੰਬਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਸੇ
1: ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਕਰੇ ਖੋ ਖੁਦ ਸਾਮ ਸੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਕੋ ਸਵਾਲ ਬਾਈ
0: ਕੋਈ 100% ਕੋਈ ਨਾ ਦਾ ਨੋ ਕੋ
1: ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਈ ਹਾਜੂ
0: ਨਿਆਂ ਚੁਕਾ ਸਕਾ ਸੇ ਮਖਸਨ ਸਭ ਤੇ ਨਿਆਂ ਟੈਸਟੀ ਸੇ ਨਿਆਂ ਨੇ ਨਪਿੰ ਦਿਆਨਾ ਟੀ ਸੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹਾਸ ਪਰ ਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੋ ਥਮਾ ਥੁਨ ਨਦ ਮੇ ਲੁਸ ਨੇ ਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨੋ ਤੁਕ ਤੁਕ ਦੇ ਸਾ ਪੇ ਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਸ ਦੇ ਬੋਸ ਯਾ ਜੂ ਖੁਦਾ ਨਰ ਸੰਮਾਨੀ ਪਾਰਿਆਂ

दर सख पैंतीस सख मस्त खे गंगे निन्युत पिन मीडियम वेवी का अच्छे सा आकाशवाणी कारगिली कना जरिन्युत वक्सपो खबर इथोसों सुख कसता पुर्गी खबर उन्ला यन मजहत

0: Dari sak payantes purgi khabarun lang yani nutpin medium wavika ngacha sa Akashwani Kargili ka na zrinut.
1: Jangi business un lasket tang mifia lenchik Akashwani rox yanti chonglenun local in ya fayuli thogikain Akashwani stanchain customer un sak pilepi scaps mangmu. Darina yantes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain Akashwani ga kender chiki ka advertisement booking Akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu dona ringin seyot booking befia call bazat 8700014242 ka.
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
3: 8700014242। सुनो ना।
2: हाँ।
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ,
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: एलुमिस बनी नूह इंसानी रुख्स बचाई हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम।

0: मुल्क में कोऑपरेटिव तहरीक एक नए मरहले में दाखिल हो गई है। वजारत कोऑपरेशन की पांचवीं योम तासीस तकरीबात से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटियों को मुस्तहकम करने के लिए कोशिशें जारी हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो ऑर्गेनिक अशिया की पैदावार को बढ़ावा दें और कीमियावी खादों और जरासीम कुश अद्वियात का कम से कम इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि पिछले पांच बरसों के दौरान वजारत कोऑपरेशन ने करोड़ों लोगों के मैयार हयात में बेहतरी लाने में अहम किरदार अदा किया है।
1: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: कौम आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके 125वें जन्मदिन के मौके पर खराज अकीदत अदा कर रही है। इस हवाले से आज मगरबी बंगाल की हुकूमत की तरफ से कोलकाता में वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में आनजहानी के रोल को उजागर किया गया। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने उपराष्ट्रपति भवन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गुलाए अकीदत नजर किए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने आनजहानी को एक अजीम तालीमदान और दानिशमंद स्टेट्समैन करार दिया। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर मुखर्जी को खराज अकीदत अदा किया है। एक मजमून में वजीर अजम ने उन्हें हिम्मत, हुब्बुल वतनी और बेलौस खिदमत का मुजस्समा करार दिया। जिन दीगर शख्सियात ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खराज अकीदत अदा किया है, उनमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खराज अकीदत अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी ने कहा कि कौमी यकजहती और कौम के तई बेलोस कुर्बानी देने का आनजहानी का जज्बा हमें लंबे उर्से तक तरगीब देता रहेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन की तकरीबात के ताल्लुक से आज माय भारत की तरफ से श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस दौरान नौजवानों को बाइख्तियार बनाने नीज कौम की तामीर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रोल को उजागर करने के लिए मुतादिद सरगर्मियां अमलाई गईं। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में डिजिटल अरेस्ट लाहे अमल को चालू करने के अमल में तेजी लाने, नीज साइबर जरायम की रोकथाम से मुतल्लिक निजाम को मुस्तहकम करने की पेशरफ्त का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने साइबर फ्रॉड्स और ऑनलाइन माली जरायम के बढ़ते चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए एहलकारों की तरबियत हुनरमंदी में इजाफा करने की जरूरत पर भी जोर दिया। जम्मू कश्मीर से चरीज और सेंट्रोज आलू बुखारों पर मुश्तमिल अपनी नौवियत की पहली खेप को मुतहिदा अरब इमारात के लिए बरामद किया गया है। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से यूएई भेजे गए इस खेप की बदौलत यहां के किसानों को अपने मेवों की अच्छी खासी कीमत हासिल होगी और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वादी के एक मारूफ अदीब और कलमकार रशीद राशिद का कल इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल पर कई अदबी शख्सियात और अंजुमनों ने रंजोगम का इजहार किया है। कल्चरल एकेडमी की सेक्रेटरी हरविंदर कौर ने मरहूम को खराज अकीदत अदा करते हुए उनकी वफात को अदबी दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया है। एकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी अदील सलीम, कल्चरल एकेडमी के साबिक सेक्रेटरी डॉ रफीक मसूदी, नामवर शायर और तालीमदान डॉ हसरत हुसैन, अदबी मरकज कमराज जम्मू कश्मीर के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट, ए आर आजाद मेमोरियल फाउंडेशन, सागर कल्चरल फोरम सुकरपटन और रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन ने भी मरहूम के इंतकाल पर सदमे का इजहार किया है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि 1 अरब 4 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड्स को 93 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स के साथ जोड़ा गया है। इस पहल को डिजिटल

0: डिजिटल पब्लिक हेल्थ निजाम के हवाले से एक अहम पेशरफ्त माना जा रहा है। इस निजाम की बदौलत मरीजों को डिजिटल हेल्थ खिदमात एक ही प्लेटफार्म पर दस्तियाब हो रही हैं। डोडा में आज हुई भारी बारिश के बाद NH-44 पर प्रेमनगर के नजदीक मिट्टी के तूदे गिराए हैं। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू ने खबर दी है कि इस सूरतहाल के नतीजे में डोडा को किश्तवाड़ से जोड़ने वाली इस सड़क को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मनुष्यात मुखालिफ सरगर्मियां जारी हैं और पुलिस की तरफ से इस बिद्दत में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने अनंतनाग और सोपोर में मनुष्यात मुखालिफ कार्रवाइयां करके काफी मिकदार में नशीली अशिया बरामद की हैं। यह अमर काबिल जिक्र है कि 11 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नशा मुखालिफ 100 रोजा मुहिम की शुरुआत की थी। इस मौके पर उन्होंने नशाखोरी का धंधा करने वाले लोगों को एक वाज़े पैगाम दिया था।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: वादी के अव्वल से 12वीं जमात तक के सभी सरकारी और सरकार से तस्लीमशुदा प्राइवेट स्कूलों में आज से 14 दिन की गरमाई छुट्टियों का आगाज हुआ। इस सिलसिले में महकमे तालीम की जानिब से पहले ही एक हुक्मनामा जारी किया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक मजकूरा स्कूल 20 जुलाई को दोबारा खुलेंगे। और अब कुछ मुख्तसर खबरें। बारामुल्ला के जिला तरक्याती कमिश्नर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने आज सोपोर इंडस्ट्रियल एस्टेट का दौरा करके वहां ताजरों, कारखानादारों और यूनिट होल्डरों के साथ बातचीत की। तरक्याती कमिश्नर ने कारखानादारों को यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने आज दमहाल हांजीपोरा सब डिवीजन का दौरा करके वहां जारी तरक्याती कामों और दीही तरक्की की स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो कामों के आला मैयार को बरकरार रखते हुए इनकी मैयाद बंद तकमील को यकीनी बनाएं। डीसी बड़गाम अथर आमिर खान ने एक मीटिंग के दौरान 220 केवी वागूरा बड़गाम जैनकू ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट के लिए हसूल अराजी मामले का जायजा लिया। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियान शिशिर गुप्ता ने आज एक मीटिंग के दौरान SASCI, PMGSY और दीगर तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो प्रोजेक्टों की तकमील में हायल रुकावटों को फौरी तौर से दूर करें। मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अक्सर मकामात पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 20.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:26 और गुरूबे आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
2: फीस तो देखो
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
4: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
5: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
3: वो कहाँ है?
5: मिठाई।
6: RBI कहता है
7: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: आदाब, आज का तबसरा लेकर हम हाजिर। वादी कश्मीर इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है जिसके बाइस रोजमर्रा जिंदगी, सेहत आमा, तालीम, ज़िराअत और कुदरती माहौल पर मुख्तलिफ नौइयत के असरात मुरत्तब हो रहे हैं। कश्मीर को अमूमी तौर पर मुअत्तदिल और खुशगवार आबोहवा के लिए जाना जाता है लेकिन हालिया बरसों में मौसम के बदलते रुझानात ने यहाँ के कुदरती तवाजुन को मुतासिर किया है। ये सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है कि न सिर्फ मौसमी तब्दीलियों के असबाब को समझा जाए बल्कि इनके मुमकिन असरात से निपटने के लिए इज्तिमाई जिम्मेदारी का मुजाहरा भी किया जाए। माहरीन के मुताबिक मौजूदा हीट वे

जय हिंद फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए सुनने वाले तमाम सामिन की खिदमत में मेरा खुलूस भरा आदाब। तो आइए सामिन संगीत से भरे इस प्रोग्राम के आगाज में सुनते हैं फिल्म घायल से गीत, जिसे गाया है पंकज उदास और लता मंगेशकर ने। गीतकार है अनजान और संगीतकार बीपी लाहिरी।

0: अभी आपने सड़क फिल्म में अनुराधा पोटवाल और मनहर को सुना। लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम का अगला गीत जीत फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में, बोल है समीर के और मौसीकी तरतीब दी है नदीम श्रवण ने। पहले सुने ये छोटा सा वक्फा।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
4: क्या हुआ अबू?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
4: कोई डर खौफ ना करे अबू, डिजिटल अरेस्ट जैसा

0: कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
0: पुलिस, बैंक, RBI वगैरह के नाम से आने वाले साइबर मुजरिमों के फोन या वीडियो कॉल से होशियार रहे। उन्हें कोई पैसे ना भेजे, बल्कि फौरन पुलिस में शिकायत करें। अगर समझदारी नहीं दिखाएंगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभी आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे फौजी भाइयों के लिए मीडियम वेव 684 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी कारगिल से बोल रहे हैं। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में खबरें रिले करेंगे। रिले का थोड़ी देर इंतजार कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रभवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
3: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक

0: मिलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
1: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरे ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
3: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
4: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
5: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले

0: दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच IMD ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले तीन से चार दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई ने तीन T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, जस ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉ गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askar के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के छठे स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तीन मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जकार्ता पहुंच गए हैं। वजीर आजम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं सालगिरह के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि उनका तस्वुर नए भारत की रहनुमाई करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और कृष्ण मोहन को उपरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बहुत तेज बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साहिली कर्नाटक में कल बहुत तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ईरान के आजानी आला रहनुमा आयतुल्ला अली खामनई को अलविदा कहने के लिए तेहरान में लोग बहुत बड़ी तादाद में जमा हुए। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात अमरीका में पुर्तगाल और स्पेन का मुकाबला राउंड ऑफ 16 के मैच में होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दो रोजा सरकारी दौरे पर आज शाम जकार्ता पहुंचे। जकार्ता हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। नेज इंडोनेशिया के सीनियर वुजरा, इंडोनेशिया में भारतीय सफीर और भारतीय बिरादरी के अरकान ने जनाब मोदी का पुरजोश खैर मकदम किया। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने ताल्लुकात को बुलंदी अता करके उसे जामे कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया था, जिससे अवाम को बहुत फायदा पहुंचा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस्तकबाल में इंडोनेशिया और भारत के रिवायती रक्स पेश किए गए, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तहजीबी और सकाफती रिश्ते की अक्कासी होती है। इस मौके पर भारतीय बिरादरी ने जनाब मोदी का पुरजोश अंदाज में खैर मकदम किया। अपने दौरे में वजीर आजम मोदी इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। तवक्को है कि बातचीत के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, बहरी सलामती, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सकाफती तबादले को मरकजी हैसियत हासिल रहेगी, जिससे भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे करीदी शराकतदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय बिरादरी के अराकीन ने वजीर आजम के दौरे से मुतालिक अपने जोश व जज्बे का इजहार किया और एतमाद जाहिर किया कि यह दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा और तिजारत और सरमायाकारी के लिए नए इम्कानात पैदा करेगा। भारतीय बिरादरी ने इंडोनेशिया में कारोबार करने में आसानी से मुतालिक भी मुस्बत ख्यालात का इजहार किया और कहा कि भारतीय बिरादरी इंडोनेशिया के साजगार माहौल में अपनी सकाफती पहचान बरकरार रखते हुए इंडोनेशिया में रच बस गई है। इंडोनेशिया के जकार्ता से संदीपोन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अजीम मुहिब वतन और भारत की सालमियत के लिए वक्फ एक दूरंदेश शख्सियत थे। डॉक्टर मुखर्जी की 125वें यौम पैदाइश के मौके पर अपने एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के ख्यालात नए भारत के लिए रहनुमाई फराहम करने में अहम रोल अदा कर रहे हैं।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: उन्होंने कहा कि हुकूमत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं सालगिरह को दो साल कौमी जश्न के तौर पर मना रही है। वजीर आजम ने कहा कि इन तकरीबात का आगाज पिछले बरस 6 जुलाई को हुआ था और ये अगले बरस 6 जुलाई तक जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की जिंदगी एक तरगीब है जो बताती है कि किस तरह एक तसव्वुर एक अवामी तहरीक के तौर पर अपनी तकमील को पहुंचता है। जनाब मोदी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी हुकूमत की तश्कील के साथ रियासत इस कौमी एजाज के तई जोश व खरोश में मजीद इजाफा कर रही है और तहरीक देने वाली इस शख्सियत को याद कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती तकरीबात में शिरकत की। वजीर दाखिला ने आज कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आबाई घर का